0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को

0: अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G

0: सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: देते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के

0: 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुँचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार।
2: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: Good morning, listeners. On this morning, Facts and Fun radio program, the topic is on facts about various industries. So, listeners, let's kick things off with the automobile industry. Well, did you know that the first car ever built was by Carl Benz on January 29th, 1886? Carl Benz applied for a patent for his vehicle powered by a gas engine. The patent number 37435 may be recorded as the birth certificate of the automobile. In July 1886, the newspapers reported on the first public outing of the three-wheeled Benz patent motor car, model number 1. Moving on to the film industry, did you know that the first ever featured length film, The Story of the Kelly Gang, was released in Australia in 1906? It set the stage for the cinematic masterpieces that would follow. Now moving on to the music industry, ever heard of Elvis Presley's iconic hit Heartbreak Hotel? Well, it became his first number one single on the Billboard charts in 1956, catapulting him to stardom. Now on to the aerospace industry. Did you know that the Wright brothers' first successful powered flight in 1903 lasted a mere 12 seconds? It may have been short, but it paved the way for humanity's journey to the stars. Let's not forget about the gaming industry. Did you know that the first video game ever created was Pong, released by Atari in 1972?

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?
2: मैं

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूँगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज़्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूँ वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नज़र में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूँ, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था, आरडी बर्मन साहब का, और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट,
1: तो उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
0: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल एज अ कोरियोग्राफर। समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील, फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पर, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपनी फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफर की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे

सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ, तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो वो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नज़ारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूँगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 films, नॉट मच, बट दिस इज़ वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ वो नो एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म से।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे

0: गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे। गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था,
1: अच्छा,
0: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के, जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही सोच कर, या साहिर लुधियान के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
1: चित्रलेखा,
0: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड कि क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे हैं।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं
0: किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीज़ों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस, जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है
1: तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में, ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझें कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूँ जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूँ वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज़्यादा नहीं नाचता तो तुम ज़बरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियाँ भी दिखानी है क्योंकि कहानियाँ के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में

0: बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज़, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा

0: आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे सक सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फटफट काटो, फिर यू नो झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मज़े नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूँगा, और अगर लूँगा तो वाइड लूँगा भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं, और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना,
1: अजनबी।
0: हाँ, अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं? मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाते हैं।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो कि परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: पा। सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: Yusuf, Ritik, Shahid, all very good. Very good dancers. Ranveer also is very good dancer. And they also work hard. So it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है।
1: सही कह रहे हैं।
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी। शी वाज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में उनको नाचना है, तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी। कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज वन। मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था। तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं। उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है। उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से, इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर, उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल, हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल। और ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे। कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे, तो उनको समझ थी। सो द बेस्ट एग्जांपल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी, वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वाज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे।
1: एक और नाम है पद्मिनी,
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी। सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन्ड, साउथ की थी वो, सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड। और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी। Whereas others didn't know how to dance.

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

किस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया। राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था तेरे आंगन की। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब ये है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ तिवारी से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी। राज खोसला महान गायक कुंदनलाल सहगल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात ये थी कि माटुंगा में राज खोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राज खोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते। एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया। इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा कि देव आनंद और राज खोसला की दोस्ती पुश्तैनी थी। दरअसल इन दोनों के पिता एक साथ कॉलेज में पढ़े थे तो दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था और ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक चला आया था। बात ये थी कि बतौर गायक राज खोसला का करियर ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा था। एक दिन बस यूं ही देव ने कहा कि राज, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुरुदत्त, वो अपनी अगली फिल्म बस शुरू करने वाला है, क्यों ना तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ। राज खोसला ने कहा, देव तुम जानते हो कि मेरी दिलचस्पी फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, मैं तो गायक बनना चाहता हूं। देव आनंद के जोर देने पर राज खोसला किसी तरह राजी हो गए और फिल्म बाजी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।

1951 में आई बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। राज खोसला ने अपनी फिल्मी तालीम गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देव आनंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने ये गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना हेमंत को

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थीं और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका ये सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप।

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थीं और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका ये सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। फिल्म उतनी नहीं चली लेकिन एक निर्देशक के रूप में राज खोसला की एक पहचान तो बन गई। गुरुदत्त ने जब देव आनंद और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी बनाई तो देव आनंद के कहने पर इसके डायरेक्शन का दायित्व राज खोसला को सौंपा। देव आनंद का ये भरोसा रंग लाया, सीआईडी हिट हो गई, गाने खूब चले और बतौर निर्देशक राज खोसला का सिक्का जम गया।

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राजखोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजखोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

जहां से राज खोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राज खोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राज खोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राज खोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958, राज खोसला ने बनाई काला पानी।

0: ही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। 16 साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी 16 साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आरडी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

0: जला।
1: इस फिल्म की कहानी राज खोसला के सहायक बप्पी सोनी ने लिखी थी, जो आगे चलकर बड़े निर्देशक बने। राज खोसला ने नाटकीयता और रोमांच को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी फिल्मों में कई नाटकीय मोड़ होते थे, वो आपको चौंकाती थीं और किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाती थीं जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। कालापानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और CID दोनों के हीरो देव ही थे।

कालापानी के बाद सन 1958 में आई सोलवां साल, ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था।

सन 1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने। एक थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राज खोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देशक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप तो उसमें भी देव आनंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देव आनंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

दिन थे जब जाने माने निर्माता शशधर मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को अभिनय की दुनिया में उतारने का फैसला किया था और बनाई थी फिल्म लव इन शिमला, जो सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के जरिए एक नई अभिनेत्री साधना ने फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। शशधर मुखर्जी ने साधना के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस सिलसिले की दूसरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने याद किया राज खोसला को, और इस तरह आई एक मुसाफिर एक हसीना साल 1962।

एक मुसाफिर एक हसीना का भी परिदृश्य वही था जो राज खोसला की फिल्मों का आधार होता है, सस्पेंस, रोमांच, जासूसी, नाटकीयता। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी।

साधना के रूप में राज खोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राज खोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राज खोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी? सन 1966, मेरा साया। सन 1967, अनीता।

वो कौन थी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्यमय साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अब ये लज्जा गले एक अचंभा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहर अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई, जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राजकोर

0: साहब की राज खोसल साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें।
1: देवेंद्र गोयल
0: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
1: जी।
0: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूँ आपकी सिचुएशन। अब वो आए, वो पता नहीं देखिए आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, ये कह के वो चले गए। तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन, सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें, एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आया तो दूसरी ट्यून। उन्होंने कहा ठीक है सुना। जैसे उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। तो मनोज कुमार क्या कहता, दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं।
1: ओह गॉड,
0: मैंने इस ट्यून को मना कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
1: जी
0: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राज खोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस बीच सन 1966 में राजखोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थी, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थी। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।
1: जब

कितना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी दो बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे दो बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूँ।

इस फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राज खोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे सुनील।

आशा पारेख के साथ राज खोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की।

ये फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास अशीतोषी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी। नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी, वो उन्हें एक विलक्षण निर्देशक

इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले थे। राज खोसला को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार।

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे।

और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी साहिल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए

राजेश खन्ना और मुमताज की अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित कर पाए।

दूर आस्ते राजकोसला की सामाजिक और नाटकीय फिल्मों की सरताज है। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बाना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

0: सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

इस दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

80 का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई सनी।

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया। इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी परमन।

नब्बे का दशक आते आते राजखोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राजखोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राज खोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं, ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे राजखोसला पर ये विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस

0: के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: कमर जलालाबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं, आपने मदन मोहन का सर्वाधिकीय गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य जवानियां अपनी थी, धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

कालीघटा फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज़ है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

शेवन रिजवी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने, महेंद्र कपूर आशा भोसले के युगल सुरों में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी दिल और मोहब्बत।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफ़र की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओ, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता, एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो तेरा हुस्न रहे आबाद, हाँ एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ, होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हम सफर तेरा दिल ही है, ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो, दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: यूं ही तुम मुझ

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफ़र में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा। और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है। मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिज़ाइन पर ध्यान दिया है या आपको जब आप इसे ख़रीदते हैं तो इसकी डिज़ाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिज़ाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में ज़रूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोताओं कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवान खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज़्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है, और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओ, वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप ख़रीदते हैं। जहाँ आपने जहाँ भी ख़रीदा होगा, जहाँ से भी ख़रीदा होगा, वो एक ख़ास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी

0: कहते हैं और क्या आपने यहाँ कभी ख़रीदारी की है। एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हमसफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफ़र का हमसफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफ़र की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है, आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।
1: रंग में है

0: जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओ, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज़ का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं, तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज़ बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियाँ तो दिखा देगा, पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा, पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और ये है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास

होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफ़र कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफ़र कजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, ज़रा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आँखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं, आईना चेहरा जुल्फ हम सफ़र और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्ममंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है, आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतज़ार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफ़र हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफ़र अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ,

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहरी आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक

एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल, स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक को और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब ख़रीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, ज़ीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नज़र आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नज़र आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लगता है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड। मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, Interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organized throughout the contest, frustrating their opponents and capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।

0: राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत

0: हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रेडियो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

0: मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।

0: पूरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी।
5: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुआ।

0: प्यार का कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओ नमस्कार, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओ, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहूनगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी, अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज़ का मनचाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदाई है? क्यों छुप क्यों हो गई?

0: कुंते की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
1: फिर वही तुलना।
0: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
1: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं।
0: क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी। जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया
1: महाराज।
0: हाँ गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है। तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज। किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए। पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गंधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर कल्याण करे।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज। जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

महाराज दुर्मुख दुर्जय दुष्कर्ण शत्रुंजय बिंद महारानी गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
3: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा, तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
3: क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
3: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
3: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी। एक

0: इन जीवन का अभिशाप, 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो का अंधारे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
1: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
2: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
1: शांत हो राजमाता।
2: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
1: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
2: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
1: देवी गांधारी,
2: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
1: मुझे क्षमा करो माता।
2: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
1: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
2: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा और संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खूबी तुम्हारे मन की, मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गोष्ठी को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना?
1: कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं थी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हट नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया?
1: महाराज,
0: शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि

0: ये धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है कांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं कांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए कांधारी, कुंती के 5 ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर अहर्निश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: कांधारी देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हट धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: कांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज।
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।

0: तुम भी।
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

0: अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: Asnuki Mumbai New York pa vivid paradisin dong angashiku tama pang pizza ko dong banakalami tana sushi mizong ba transmission shibangar manani tana ba transmission pizza ko minit sa manong lapok sa ipaya akashwani mukokchong.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हे उया तंदा उया लगा नगना रोगो या
2: अरुंदे हे
1: वागी जहाँ नगा गजर या
2: आया उधर किम्मा बाया आया कर मियक मर दो
1: आया आजी किम्मा बाजी बोको तंग अमदम जाजे या
2: हाँ उधर शिदा
3: तंदा असिंग किन्नगर जमिया कंगा मदम मा तिंशु कुदु या
1: हाँ नहीं आजी मैं बाकी जामा का उस जंजीर में का जंजीर जो आजी तंदा उस जंजीर में आ रहा हूँ
2: यार आई तो या सुनो आ चकन मार दुख चुबाई क्या दियो जी है
1: हाँ नहीं आजी शिदा हाँ वो
3: सिर्फ बंगला में तुम्हें डम तंदा असुनो पो सिंसाक समका खातिनी
1: आई जा शिदा का दो जी बिगाजी मा याले बिगाजी
2: मुलां
1: वो ता नंदो ये तम्मा हास नंदो बु या या कंगन बु नी जी हन रहो या नंदो ये नी यो दा ते ती तो मुनो रुंग आ ली बा का ना
2: आउ जे
1: तंदो सांग का जी बा ना तंदो सांग का जी बा उन द किया कंगा दं तो मुनो नंग आ रुंग नंदो ये ते रंग आ द ना जे या किजी सा किजी कुमा का तंदो सांग जी आ का जी जी आ सी आ सुनो आ वाशी कुमा ली जी इधम या कन ने आंग तो चुंबा मजा लिया जी बा या कन रस आ जिम बिया का जी ना रुया
2: हाँ जी पला का जो बात मसा गो सगा नी उदा नी आगा तो पाया।

0: The batting side, so we are good to now.
1: Okay, let's talk about the bowling as well. How's the knee to start with?
0: It's good, yeah.
1: Okay, how do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
0: Yeah, obviously it's look like a batting track, so but still we have a good bowling unit, we have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
1: Okay, any key in or outs for you for the team?
0: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be a...
1: Oh, the Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
0: Thank you.
1: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
2: So a very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today over here, Vaishali.
3: मुझे ये लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा ऑफ पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ढलता जाएगा वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता जाएगा। सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है, ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया है इन्होंने।
2: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandhana but of course Harmanpreet Kaur, but just to carry that conversation forward very quickly, जो आपने यहाँ बात रखी अभी वैशाली कि जैसे जैसे ये विकेट और पुराना हो गए पिच होगी, सो इट्स अ गुड विकेट अभी बैट करने के लिए, लेकिन बाद में बोलो फ्रेंडली हो जाएगा। आई कम टू यू मोना ऑन दैट, वी सॉ बोथ द कैप्टन्स जंपिंग ओवर देयर एट द चॉइस ऑफ हैविंग चोजन टू बैट फर्स्ट टुडे, एंड गिवन द फैक्ट दैट ऑल्सो वी हैव भारती कमिंग बैक इन टू द प्लेइंग 11 फॉर अस टुडे, डू यू थिंक दैट्स एन advantage in terms of batting for India?
4: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुलमाली को आज रखा गया है टीम में। हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं, तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है, फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है, तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है। जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं, और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है, और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए।
5: जी हाँ बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मातजीब मारी है। कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया, जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहाँ हमने देखा कि 200 से ज़्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहाँ वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई, क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
6: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज़ दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे वेयर दे प्लेड ऑन देयर ओन ग्राउंड, सो दे स्कोर्ड वेल, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल्सो इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, दे हैव लॉस्ट ऑल मैचेस एक्सेप्ट वन विच दे वन। सो जनरली इफ़ यू सी देयर बैटिंग रिवॉल्व अराउंड फातिमा सना, इफ़ शी गेट्स आउट अर्ली then they are scoring in the range of 120 to 130 runs. So, in wickets ke upar, mere khayal se hum agar batting first, abhi hum kar rahe hain, batting hamari strong hai, to agar hum score 170 se upar kar dete hain, to it will be a very challenging total for Pakistan and we should be able to beat them.
5: जी हाँ बिल्कुल, 2025 के बाद से फातिमा सना ने 12 मुकाबलों में 335 रन बनाए हैं, 13 विकेट भी लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 183.06 का है।
2: जी एंड आनंद, दिस इज आल्सो फॉर ऑल आवर लिसनर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर, आवर कॉलिंग लाइंस आर ओपन। जी हाँ, हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 011-2342-1084,

0: 0112342108. आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कर्नल भूपराज सिंह, वैशाली माथुर और मोना पार्थसारथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड नाउ टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वैशाली आई विल कम टू यू। बर्मिंघम की जो पिच कही जाती है, इट्स ऑलवेज बीन अ स्लो पिच, 6.77 का यहाँ पर हमने देखा है एवरेज नेट रन रेट पर ओवर चलता है जो हम बात करते हैं। उस एंगल से हमने आज ये भी देखा कि व्हेन वी फर्स्ट वन द टॉस, हरमनप्रीत सेड दैट वी आर ब्रिंगिंग इन 3 स्पिनर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स। फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव फॉर द इंडियन साइड, आप किस तरह से देख रहे हैं आज भारत अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतर रहा है?
1: वैशाली मैम, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? ढाई सौ की उम्मीद लगा रहे हैं जी वैशाली।
2: जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति वंदना जब उनके सामने नासिर संधु और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है। लेकिन आज हमारी स्मृति वंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति वंदना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है। और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है, सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी। आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की, 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं, फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासिरा संधु जिनका आप जिक्र कर रही थी उनके नाम 9 विकेट हैं। तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं। मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शिफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं। स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहाँ किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी, क्योंकि पिच पर काफ़ी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
3: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में। इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानिसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते, तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता वो अतीत की बात हो गई है, ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट, तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागज़ों पर बनती है, उसको मैदान पर रणनीति पर अमल करना ज़रूरी होगा। और यहाँ पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा, और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहाँ बचना बहुत ज़रूरी होगा।
0: राइट, एंड वी आर टोल्ड वी हैव अनदर लिसनर जॉइनिंग अस राइट नाउ विद अस। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अविनाश जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? राइट, आई टेक दैट क्वेश्चन स्ट्रेट टू आर एक्सपर्ट कर्नल गुपराज, वुड यू वांट टू एड्रेस दैट? रिचा घोष कमिंग इन एट नंबर 3 इज हिज आस्क और सजेशन, हाउ गुड और बैड डू यू थिंक दैट इज इन टर्म्स ऑफ placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
4: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4-5 batsmen, and they are experts in their position, and Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and

0: and Mandana, they are good players. They'll, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
1: राइट
2: जी हाँ
1: आई जस्ट टेक अ क्वेश्चन विद वैशाली ऑल्सो आपके पास आऊँगी मैं आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्व्ड डू यू थिंक इट इज़ नो मोर अ फाइट और अ राइवलरी बिटवीन इफ यू टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग the kind of cricket they are playing
3: I think it's a mindset kyunki agar ek player agar khel raha hai to uske sath sath hame na sirf ye dekhna chahiye ki uska kis tarike ki achievements hai usne kya kya experience hai uske paas aur wo kaise play karta hai rather than ab hum apni politics side mein rakhe dekhe to and uske sath hame ye bhi dekhna chahiye ki wo kis tarah ka fielder hai कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व्ड है टीम के साथ और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं और अभी मैं एक और चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जहाँ पे उनको कहीं भी भेजेंगे किसी भी डाउन पे भेजेंगे वो वहाँ जाके अपने आप को शो करती है हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी हर दिन एक जैसा नहीं होता है लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती हैं और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मज़ेदार लगता है और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी
2: जी बिल्कुल अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत के प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना हैं शेफाली वर्मा हैं जेमिमा रॉड्रिग्स हैं हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान भारती फुलमाली ऋचा घोष दीप्ति शर्मा अरुंधति रेड्डी श्रियंका पाटिल श्रीचरणी और क्रांति गौड़ इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया थोड़ी बात हरमन की जाए हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रही हैं बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं क्या लगता है इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर
4: देखिए ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा और खासकर अब ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने अनुभव है तो रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए यू वांट मी टू रिटायर व्हाई तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो आक्रामक रहती है और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में तो मुझे लगता है कि वो दबाव ज़रूर होगा लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है
1: Right, and I'll come to you, Mona, just to take that question forward because aap jawab dena cha rahe the about how India. the cricket of both the countries has evolved and whether possibly India ka cricket se zyada uchch ho gaya hai compared to Pakistan ka cricket jo
4: Sakshi aapne jo sawal pucha tha ki dono desh kahan thehrte hain mahila cricket mein ye aapka question tha to aapko ye bhi dhyan rakhna hoga ki bhartiya team khas taur pe WPL aane ke baad se ya fir exposure ki hum baat kare to lagatar khelti aa rahi hai aur Pakistan 2 saal mein ek ya do श्रृंखलाएं खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई फातिमा सना ने लेकिन जो हार्ड टेस्ट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL आप हंड्रेड्स में देख लीजिए आप बिग बैश में देख लीजिए भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो काफ़ी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं तो बहुत ही फर्क है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें या प्लानिंग वाइज भी हम देखें या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को और भारत में तो काफी फर्क पड़ता है आप कितने साउंड हो

0: पर उतर रहे हैं मैदान पे, वो काफी मायने रखता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है।
1: Right.
2: गेंदबाजी की बात करें तो श्री चरणी पर सबकी नजरें होंगी। 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा, एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट हैं और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है। श्री चरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं इस वर्ल्ड कप में।
3: देखिए श्री चरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो इन दीज लास्ट फोर मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, शी इज़ टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, 2 विकेट्स, 3 विकेट्स इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज टेकन, सो शी इज़ वेरी गुड। बट वॉट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा।
2: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, स्ट्रगल कर रही है।
3: या शी हैज जस्ट टेकन इन वन मैच 5 विकेट्स, इन रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी, पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी। एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो, शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेज दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। So these 3 spinners we are looking at, and Arundhati, the fast bowler, also she's done well. So our bowling is quite good as when we compare ourselves with Pakistan.
1: Right. Since we're talking of Deepthi Sharma, abhi Deepthi Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipacha Puttawong of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Mona, आपके पास आ जाती है इस बात से कि a moment of pride, क्योंकि हम Indian women's cricket के evolution की बात कर रहे हैं, Deepthi Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets, 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
2: Mona, इस सवाल के जवाब पर आएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्ते। जी बताएं क्या बताना चाहते हैं आप। जी शुक्रिया। जी हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं। जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं। जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी।
0: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी हैं और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज़्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और ये T20 में खास तौर पे दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही हैं, उस लय में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड चाहे कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं। तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
2: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारतीय फुलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में शफल देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर हैं जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तरार पारी खेल सकती हैं।
4: अगर मैं भारतीय की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कॉन्टिन्यूस करती हुई आ रही हैं, दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है, जैसे कि हम देखें अगर कंपेरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है, और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही हैं लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका ज़िंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आएं, तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करें और हो सकता है कि जहां भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहां पे अपने आप को प्रूव करें।
1: राइट, आई कम टू यू नाउ कर्नल भूपराज एंड आस्क यू, डज इंडिया गो इन एज हैवी फेवरेट्स इन द गेम टुडे?
3: Oh yes, we are heavy favorites and I am hoping for a one-sided match.
1: One-sided, wow. Mona ji?

0: हैंड्स डाउन बिल्कुल इंडिया फेवरेट है. और जैसे हम बार बार बात करें कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है. और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हैं. काफ़ी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है. तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शे कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे.
1: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है, गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है. और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था, यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
2: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेंस एंड वेमेंस में बड़े आराम से जीत रहा है. तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार, एंड मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा खेलेंगे.
1: जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे. वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे? हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है.
3: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए और जितने रन्स हम लूट सकते हैं उतने रन्स हम लूटें. हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफ़ी टाइम तक देखा है. और स्मृति मन्ना का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है, वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में.
1: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं. तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का यह सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है. बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं. भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है. वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार.
3: थैंक यू.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: मैं आशीष चरंगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से, और अब तक इस प्रतियोगिता के, इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया। और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम के कप्तान हैं, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रीचरणी और शंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान हैं वो हैं फातिमा साना, मुनीबाली टीम के विकेट कीपर गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबेन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधु, सादिया इकबाल और तास्मिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारत के तमाम

0: करेंगी। और बहुत ही चतुराई के साथ वहां पर सादिया इकबाल ने भी गेंद की दिशा को लेग स्टंप की तरफ रखा और जैसे ही कट करने की कोशिश की गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेट कीपर मुनीवा अली ने कोई कोताही नहीं बरती, आसानी के साथ उस गेंद को अपने दस्तानों में कैद कर लिया और इस तरह से भारत को एक बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब रहे। पहले ही ओवर के दौरान भारत 6-1 विकेट के नुकसान पर।
1: Jemima Rodrigues is the new batter and Sadia Iqbal misses her mark this time around, delivers this one down the leg side on a good length, too far for Jemima to make contact. Now this is an interesting one. Remember, recently they had Yastika Bhatia batting at number 3, who is a left-hander obviously. Pakistan have two left-arm spinners, so the left-hander can be very useful in modern-day cricket to counter the left-arm spinner. However, today India have left left-handed Yastika Bhatia out. Meanwhile, Sadia Iqbal delivers this one in line with the stumps on a good length. Presses forward as Jemima Rodrigues and wards it off towards extra cover. End of the first over. 7-1.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर और अब स्मृति मंधना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर जेमिमा रॉड्रिक्स हैं। 25 वर्ष की उनकी उम्र, मुंबई में जन्मी और पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और न केवल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बल्कि एक बहुत गहरी छाप उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर अब तक छोड़ी है। 126 मुकाबले जो इससे पूर्व उन्होंने खेले हैं उसमें कुल 2732 रन उन्होंने बनाए हैं और औसत की यदि बात करें तो 30 से ऊपर का उनका औसत और स्ट्राइक रेट लगभग 129 की। काफ़ी उम्मीदें भारत को इस अनुभवी जोड़ी से और देखना यह है कि ये जोड़ी अब किस तरह से यानी पारी को आगे बढ़ाती हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फातिमा के द्वारा और फातिमा साना की इस गेंद को स्क्वायर लेग के दिशा में खेल दिया एक आसान से रन के लिए वहां पर स्मृति मानधना ने और इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया और भारत का स्कोर इस एक रन की मदद से अब बढ़कर 8-1 विकेट के नुकसान पर। जेमिमा अगली गेंद का सामना करेंगी और देखना यह है कि यहां पर क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमय रखेंगी या फिर कुछ हाथ खोलकर पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगी। फिलहाल फील्ड प्लेसिंग के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है वहाँ पर ये देखते हुए कि बीच मैदान पर इस समय जो दो बैटर्स हैं वो एक बाएं हाथ का स्मृति मंधना और जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। एक स्पिन स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय फातिमा साना जो कि टीम के कप्तान हैं, हालांकि कल चोटिल हो गई थी घुटने में, नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर गेंद आकर के लगी थी और काफ़ी संशय था कि वो आज का मुकाबला खेलेंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से फिट। अगले गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्का सा पुश कर दिया लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, बाईं तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। भारत टॉस जीतकर एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना चाहता है, एक बड़ी चुनौती यहां पर रखना चाहता है।
1: And immediately Pakistan make a change. They call Muniba Ali, the wicketkeeper, onto the stumps. She is called for the helmet and she is going to now stand on the stumps because Jemima Rodrigues stepped out of her crease to play the first ball in order to try and alter Fatima Sana's length. So proactive Pakistan today.
0: अच्छी कप्तानी वहां पर फातिमा साना की। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का भीतरे किनारा लिया और एक बाउंस के बाद जाकर विकेट कीपर मुनीबा अली के पैरों में जाकर गेंद टकराई और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई और निश्चित रूप से जेमिमा रॉड्रिक्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है। यहाँ पर फातिमा साना ज़रूर प्रसन्न है कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक परेशानी में डालने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की। अगली गेंद देकर फातिमा साना टीम की कप्तान पाकिस्तान की एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्टंप के नज़दीक से गेंद, थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ऑफ मिडल स्टंप की तरफ आती है, उस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। पिछली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाई हैं जेमिमा रॉड्रिक्स, अब तक 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और खाता अभी तक नहीं खुला है। शफाली वर्मा का पहले ही ओवर के दौरान आउट होकर जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो पावर प्ले में

0: अच्छा खासा एक गति भारतीय स्कोर बोर्ड को दे सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर सीधा थ्रो स्टंप्स के ऊपर, लेकिन स्टंप के
1: Dimapur District Congress Committee ra Dimapur aro Newland ye rasta biya takya upar urgent barasawale mang kori ase. Itia pura kopor. Nagaland de aji World Blood Donor Day mani ase Dimapur de. Nagaland State Blood Transfusion Council bra itu afsar Blood Center District Hospital Dimapur de mani she. Program de kotha kori gina Blood Center in charge, District Hospital Dimapur, Dr. Rungsen Lungkamar Barakushi, Jawan Generation Bra, Kun Tonet Kuria Laga Value, Dorkari, Aro Lab, Takya Narukigina, Puchipayase. Dr. Lungkamar Bra Citizens Kanke, Age Ahigina, Kun Tonet Kurigina, Jivan Pachawale, Mun Utaishe. Ito of Sarde, 50 volunteers Nishina Kun Tonet Kuriule Age Ahishe. Iki Homoide, Zonipotode, Green Club Zenepotohile, Zenepoto District Legal Services Authority, Aro Hezuku. Memorial District Hospital logoti milagina Hezuku Memorial District Hospital de itu din manishe itu afsar de kota kurigina Hezuku Memorial District Hospital laga medical officer Dr. Akaho Semabara kun huile gift of life mani jivan laga tofa aseguse aro voluntary kun tonet kuriabara maris dikhomoide medical dekpal bawale de dorkari kam kuri aseguse.
2: They safely donate blood after every 56 days. Just imagine. After every 56 days, one can safely donate. But as extra precautionary measure, we advise the donor to donate blood once in 3 months. If you start donating blood at the age of 18 weeks, and once you start donating blood every 3 months till you attain the age of 60 years, I'm sure you'll be able to donate more than 160 times.
1: District Hospital Dyonsang Day 29 Assam Rifles Bra World Blood Donors Day Manishe Kundude Dosta Jawan Bra Kun Donet Kurishe. Prime Minister Narendra Modi Aro France Laga President Emmanuel Macron Ikilawade Aji Nis Day Ballet de Exposition Day Bharat Innovates Laga Afsar Lagu Kurishe. Ito Dorkari Afsar Kundu India France Year of Innovation under the USA Idubra India France Aro Alak Desh Bra Sopsipal Innovation Startups Aro Venture Capital Funds Ikilawade Aniase. Ito Afsar Day Kota Kurigina Prime Minister Modi Bra India France Laga Rishta Takut takya oper kuta kurishe, daikwishe bishi nations kan birbar aro strategic cooperation de miligina takiliwi iki sapna aro iki interest bra kait kuria rishta kunopahi take.
3: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: जमा कुरीगिना तकिया कान लोगों दे खुदा कुरीना फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन बरा इतु काम इंडिया बाहर जुरकार कुरिया दे सबसे पहला एडिशन फ्रांस बरा होस्ट कुरिया हुले सम्मान लगा खुदा से ताइकुशे दुनिया बरा इंडिया के पिशी टैलेंट तकिया एकता देश निशना इकला नसाई हुले भी इनोवेशन आरो टेक्नोलॉजी दे बदलाव आने वाले तकु तकिया एकता देश निशना साया से
4: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
1: Advisor for CAWT, Ketejo Kamobra, NDPP Huile, NPF logo de merge Korea, Isor laga plan ase gushe. Aro party workers kange, party laga babana oper pohila mun diwale, aro party ki takutwar banai diwale mun utaishe. Joagali kisamadi 18th Chozoba, Assembly Constituency laga NPF consultative meeting de kota Korea homoi, Shri Kamobra, naga political babana, culture aro pehajan ge, pachaigina rakya huile NPF para ase gushe. Aro Party workers kangi party ki takutwar banawale karone dubara mun diwale mun uthaishe. Idu meeting de charter resolution luishe kundu de NPF logo de NDPP laga merger ke

0: big funds chula upar chinta uthi ase committee bra purana bazar de takya new deputy commissioner's office timapur de ja rasta bishi halat biya de takya upar zimidari authorities ki bi chunai dishe DTCC bara aro nutun bana newland rasta de potholes aro rasta biya itia bara tikhi takya bara mufasal surakshit na takya panai dia upar kota kuise aro jolti inspection lugina panai diole mang kuri ase DTCC bra quality sabole aro substandard kam khilaf action lobole authorities kange mang kuri ase apni kan akashwani kohima badia kopor honi ase taza kopor honi bo karone ami khan laga x handle AIR alerts aro AIR underscore kohima di follow kuribe apni kan bara itu kopor news on air app aro youtube channel AIR news kohima bara hunibo paribo Welcome back. Apni kan sam laga kobra huni ase. Peck police bra jwakali samde Bible Hill colony de hit and run khatna de tuita mahila chukam hui ja kuntu de ekta pregnant mahila bi takishe itu de shamil takya driver ke turi luise. Ekta press release de police bra kuise ekta blue maruti celerio rasta laga kulti site de chulaigina rasta de bira birai takya manuki lakai digina polai jaise pasode idu vehicle huile charikina takya tiki paise aro seize kurise aro itu logode arupi ke ekta joint operation de arrest kurise paratiya nyaya sanhita aro motor vehicles act logode churia provisions under de ekta case register kurise aro age janbin jaise phek police bra public khan ge yatilaise ki misamishi kari chulabra chukam kore de aro nisha lagigina chula huile saza pawole laga juram ekta ase aro accidents logode churigina takya drivers khan kanun hisab de victims khan ge mutop tiwole aro khatna report korule zarurat ase india huile jai jwa 12 saal de prime minister narendra modi laga visionary leadership under de sabka sath sabka vikas sabka vishwas aro sabka prayas laga principles chulaigina dangor patlaf luk paise idu homoide modi sarkar bra dukhiya manu kiti kam kuria manu mahila aro jawan khan laga phal aro adhikari karone bishi dorkari kam jorkar kurise agashwani news bra 12 saal vishwas ke vishwas vikas ke chal kalyan ke kuigina ekta special feature apni kan ge ani di ase aji ami khan bra sarkar bra desh laga citizens laga jivan di ease of living ani wole karone kotam lua opor sabo
1: साल लगा बदलाव तो थियो ऑफ साल लगा विश्वास हो जाए जीएसटी हो भी दूसरा अलग अलग टैक्सेस नहीं ले डिजिटल इंडिया हो भी हर कदम पर जनता खान लोगों देश बनाए दिया खान ये सब भावना बनाई दी से यूनियन बजट 2025-26 इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स दे डाउनवर्ड रिविजन करिया पर सब टैक्स दिया खान फायदा निमित्त बनाई से नतून टैक्स रिजिम नीचे एनुअल इनकम थियो ऑफ लैक तो तक करने इनकम टैक्स दी बोले ना लगे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी पर टैक्सेशन और जनता करने जीवन आसान बनाई दी से स्ट्रक्चर टू इतिया करने 5% और 18% स्लैब दे थकी से जीएसटी कलेक्शन पर इतु साल अप्रैल ते 2.42 lakh crore पुंचाई के ने सबसे ऊंचा लेवल रिकॉर्ड हुई है नरेंद्र मोदी सरकार पर डिजिटल टेक्नोलॉजी चला शुरू करी किने पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग करने भी बिशी उठाई दी है 5G सर्विसेज पर देश लगा डिस्ट्रिक्ट खाली 32 महीना 99.6% पुंचाई से इंटरनेट डाटा लगा खर्चा तो 97.07% पर कमती हुई है और 7.22 lakh kilometer लगा ऑप्टिकल फाइबर केबल तो भारत नेट स्कीम नीचे बचाई दी है इंडिया तो 6G टेक्नोलॉजी ते दुनिया लगा लीडर हो जबले आसे जाय जा थियो साल समय एनडीए सरकार पर देश लगा सपना तो डांगोर बनाई किने पब्लिक एनिमिटीज उठाई दिबोले प्रोग्राम्स बनाई रखी पर सब लोगों पुंचाई दिबोले काम करिसे ईज ऑफ लिविंग तो खाली कथा एकलन होय किंतु सरकार लगा गाइडिंग मंत्र हो जैसे कुनो आकाशवाणी न्यूज कोहिमा
0: आरो International Day of Yoga karone ek hafta pachigina takya humoi nation bora de josh barai takya tikhi ase yoga for healthy aging laga theme bara nerukigina hotai practice kuria bara takut aro lamba umar panai rakhiwole dikhai ase itu afsar nalwa age agashwani news kohima bara yoga practice kuria laga lab upper special series ani ase bal asana nohile child pose Viparita Karni Nahile Legs Up the Wall Pose Aro Situpant Asna Nahile Bridge Pose Nishna Postures Para Arambra Stretch Kuri De Sas Lua Aro Relax Kuria Techniques Para Pal Para Kumawale Mutap Kure Aro Recovery De Mutap Kure Amikan Bara International Day of Yoga Karoni Ruki Takya Humoi Health Pal Wala Aro Bishi balance takya future karoni dubara.

0: pose and Setu Bandha Asana or bridge pose provide gentle stretches, breathing and relaxation techniques that help improve sleep quality and support recovery. As we count down to International Day of Yoga, let us reaffirm our commitment for a healthier and more balanced future. And to end the news, a reminder of the headlines. Nagaland observes World Blood Donor Day. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron jointly inaugurates Bharat Innovates event in Nice. Advisor Kudesh Okhamo urges party workers to strengthen party and prioritize its interests. And Dimapur District Congress Committee seeks urgent intervention over damaged roads in Dimapur and Newland. And that is all we have in this evening news bulletin. We'll be back with the morning English news at 7:30 a.m. tomorrow. Good night.
1: Since 1990 at their first finals since 1998 is their former midfielder Scott Brown.
2: It's an emotional game. for us just to get the 3 points, we're sitting top of the group. It's incredible. We didn't have the best second half performance, we've all got to be honest, but we had to grind out and we knew we were going to grind out.
1: Elsewhere, Nesroy Irinkunda became Australia's youngest World Cup goalscorer as they beat Turkey 2-0 in Vancouver. Qatar claimed their first ever point at World Cup finals with a 1-1 draw against Switzerland. And there's another four games on Sunday. The smallest nation ever to reach a World Cup get their campaign underway. Curaçao play Germany in Houston. They're coached by the former Sunderland boss, Dick Advocaat.
3: We have everything to win, nothing to lose, because the expectation is not that high outside us, because we think that we can still surprise somebody.
1: Elsewhere on Sunday, Netherlands play Japan, Ivory Coast face Ecuador in Philadelphia, and Sweden play Tunisia. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
4: World Football Update from the BBC.
5: मंथना और हरमनप्रीत वो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. सुजी बेट के बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधना के हैं और उसके बाद हरमनप्रीत कौर के हैं. तो अनुभव की कोई कमी नहीं है और इस तरह की कई परिस्थितियों से उन्होंने सामना किया है, जूझते रहे हैं और उसके बाद सफलताएं उनके हाथ लगी हैं. हरमनप्रीत कौर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये उनके लिए 10वां विश्व कप है. हर विश्व कप के हर संस्करण में उन्होंने खेला है और 5वां ऐसा अवसर जबकि लगातार वो कप्तानी कर रही हैं भारतीय टीम की. तो दायित्व उनके कंधों पर बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसका निर्वाह वो किस तरीके से करती हैं ये एक देखने वाली बात होगी. फिलहाल 6 ओवर में 38 रन भारत के, 2 विकेट के नुकसान पर रनों की औसत रफ्तार पावर प्ले में 6.33 की. हरमनप्रीत 4 पर खेल रहे हैं, स्मृति 25 पर. नए ओवर की शुरुआत शमीम के द्वारा, पहली गेंद ओवर द विकेट हरमनप्रीत के लिए. मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेला और वहां पर गेंद को इससे पहले कि आलिया रियाज फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों ही बैटर्स ने 1 रन के लिए छोर बदल लिया. इस 1 रन के साथ अब भारत का स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर. स्मृति बाएं हाथ के बल्लेबाज, फील्ड पेसिंग में थोड़ा सा परिवर्तन. 19 गेंदों का सामना करने के बाद स्मृति ने अब तक 25 रन बना लिए हैं पूरी एकाग्रता के साथ खेलते हुए. विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के साथ चिपके हुए और उनके लिए राउंड द विकेट आते हुए और ये गेंद फ्रंट फुट पे आके हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया वहां पर रमीन शमीम ने और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया. दर्शक अच्छी खासी संख्या में यहां पर मौजूद. अगली गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड मिडल और स्टंप पर, एक कदम आगे निकलकर इस गेंद को ड्राइव किया था वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में. फील्डर वहां पर नतालिया के रूप में मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैटर्स को और इस 1 रन की मदद से भारत अब 40 2 विकेट के नुकसान पर. स्मृति पहुंची 26 पर 21 गेंदों का सामना करने के बाद, इसमें 5 चौके शामिल हैं. हरमनप्रीत 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. अगली गेंद का ओवर द विकेट शमीम आती हुई, फ्लाइटेड गेंद, एक कदम आगे निकालकर इस गेंद को हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर अपने दाईं तरफ जाकर फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को एक बार से फिर से ध्वस्त कर दिया. 40 पर अभी भी टिका हुआ भारतीय टीम का स्कोर. फील्ड प्रेसिंग का मुआयना काफी बारीकी से कप्तान हरमनप्रीत ऑन साइड पर करते हुए, क्या अगला शॉट उस दिशा में आएगा और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए हल्के से पुश करा ऑन साइड की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं 30 गज के

0: तो तास्मिया रुबाब जो कि मात्र 23 वर्ष की हैं, मात्र अपना तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रही हैं। इससे पहले कोई भी उनके नाम के आगे विकेट दर्ज नहीं था। पहला ही अंतर्राष्ट्रीय विकेट जो उन्होंने लिया वो जेमिमा रॉड्रिक्स का था और पिछले ओवर के दौरान एक सुनहरी अवसर उनके हाथ से निकल गया। अगर वो कैच लपक लेती आलिया रियाज तो स्मृति मंदाना का विकेट भी उनके नाम के आगे दर्ज हो जाता और क्या शानदार मैच उनके लिए साबित हो सकता था। लेकिन निश्चित रूप से इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी से, अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से काफ़ी मुतासिर किया है। भारत के बैटर्स को रोकने में कहीं ना कहीं उन्होंने कामयाबी हासिल की और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ। कुल मिलाकर अब तक 4 गेंदबाज मोर्चे पर लगाए गए थे कप्तान फातिमा साना के द्वारा और अब 5वां गेंदबाज नाशरा संधू के रूप में यहां पर लाया जाता हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर 46 दो विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की समाप्ति के बाद हरमनप्रीत 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। रनों की औसत रफ्तार 5.63। अगली गेंद और इस बार फ्रंट फुट पे आकर इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया पॉइंट और कवर के बीच में से, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: हरमनप्रीत कौर का ये पहला चौका, ये पहला शानदार कवर ड्राइव जो उन्होंने खेला देखते ही बनता था। पॉइंट और कवर के बीच में से गैप हासिल करते हुए उन्होंने इस शॉट को खेला। 13 मीटर का फासला था बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच जो खिलाड़ी हैं उनके बीच और उसका भरपूर फायदा उठाने में हरमनप्रीत कौर इस बार कामयाब रही थी। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ करके 50 दो विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद।
2: द फर्स्ट बाउंड्री फॉर इंडिया इन 14 डिलीवरीज।
0: जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी देर हो गई थी दर्पण जबकि भारत को तलाश थी कुछ बड़े शॉट्स की और अंततः हरमनप्रीत, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि उनके पास खासा अनुभव है, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसका निर्वाह वो फिलहाल बखूबी करते हुए एज वेस्टर्न के मैदान पर नजर आ रही हैं। अगली गेंद हरमनप्रीत के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर टक करने की कोशिश, लेकिन बैकफुट पॉइंट पर सीधा फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और रन बनाने का वहां पर कोई प्रश्न नहीं। स्कोर भारत का 50 दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर प्रगति पर बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं नाशरा संधु और अंपायर और स्टंप के बीच में आकर ये गेंद उन्होंने की अराउंड द स्टंप्स और इस बार गेंद को खेल दिया था वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर एक बार फिर से वहां पर मौजूद, रन नहीं मिल पाएगा। स्कोर अभी भी 50 पर टिका हुआ, रनों की औसत रफ्तार 5.77 रन इस समय है। भारत ज़रूर यहां पर कोशिश करेगा कि रनों की रफ्तार हाल फिलहाल में बढ़ाए और दर्पण अब कहीं ना कहीं जो अगर आप आंकड़े देखें तो वो ये दर्शाते हैं कि पावर प्ले में और अंतिम जो डेथ ओवर्स होते हैं उससे भी ज़्यादा जो खेल पनपता है, जो रन बनते हैं वो मिडल ओवर्स में बनते हैं। जो टीम मिडल ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर ले या अच्छी गेंदबाजी कर ले वो कहीं ना कहीं विजेता साबित होती है। अगली गेंद और इस बार खेल को खूबसूरती के साथ खेल दिया हरमनप्रीत सिंह ने मिड विकेट क्षेत्र में शानदार अंदाज में स्वीप करते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: गेंद की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं थी, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया था वहाँ पर और बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को स्वीप शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए अपने और अपनी टीम के लिए। हालांकि गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित, कोई भी फील्डर वहाँ पर आसपास नहीं था। अगली गेंद देकर एक बार फिर से तैयार वहां पर नाशरा संधु, उनके ओवर की अंतिम गेंद, 2 चौके अब तक हरमनप्रीत लगा चुकी हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ, 9 ओवर के बाद भारत 54 विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: होल्ड ऑन टू योर हैट्स फोक्स, बिकॉज हरमनप्रीत has arrived. A couple of sweep shots, her favorite shot in the previous over, one of which resulted in a boundary. Next delivery from Tasbia Rubab. Smriti Mandana steps out and smashes this one over long off for half a dozen. It's gone.

0: for 6. The second 6 of the match, the first of Mandhana's bat, and the Indian spectators in the stands are jumping for joy.
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: इस छक्के के साथ ही मानो स्मृति कहना चाह रही हूँ हरमनप्रीत को कि तू डाल डाल तो मैं पात पात का शानदार अंदाज में उन्होंने इस गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। उसके बाद जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है।
0: She stepped out of her crease in order to hit this one. It was delivered on a length from over the wicket by the left-arm seamer who has been super impressive today. Tasmia Rubab we are talking about. And Smriti Mandhana, the good thing was that she stepped out of her crease after the ball had left the bowler's hand, and therefore there was absolutely no chance for Rubab to make any sort of adjustment. The next delivery on a good length, this time Mandhana very cleverly hangs back because she was expecting the bowler to shorten her length. However, Rubab did not do that, and in the end it has been tucked away neatly towards square leg for a comfortable single. Mandhana on to 35, India 61 for 2. Next delivery is a fuller length delivery, this time around from Tasmia Rubab, and there's a chance of a run out. However, a big desperate dive from Smriti Mandhana ensures that she is home and the run has been taken. She gets up, dusts herself off, takes her gloves off, and then gives a thumbs up to her partner at the other end, saying that I'm safe and sound, don't you worry about anything. It was on a fuller length in line with the stumps, and Harmanpreet Kaur went onto the back foot, and after that she used her wrists to close the face and dinged it towards the empty midwicket region. The bowler herself ran, picked it up and hurled it back towards the stump. Alas, she could not score a direct hit, or else Mandhana might have been in trouble. The next delivery is a bit of a cutter delivered on the shorter side of good length, allows Harmanpreet to hang back and swish across the line. The ball goes towards deep backward square leg, allows for a comfortable single, which takes India's score to 64 for 2 after 9.4 overs. So pretty eventful. These middle overs are turning out to be just like you predicted, Ashish.
2: जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो मोमेंटम अब इन दोनों बैटर्स को हासिल हो चुका है क्या उसको जारी रख पाएंगे। फिलहाल अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की तरफ हटते हुए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलने में कामयाब रही थी। हालांकि वहाँ पर प्रोटेक्शन है, फील्डर ने गेंद को रोका सीमा रेखा से करीब करीब 8-10 गज अंदर, लेकिन तब तक आसानी के साथ 1 रन के लिए दोनों बैटर्स ने अपना छोर बदल लिया था।
0: So the score moving to 65 with that. 9.5 overs are done. Harmanpreet Kaur on 20. She is back on strike after that single that was taken by Smriti Mandhana. Last delivery of the 10th over coming up. Here comes Rubab and beats the bat. It was angled away towards the offside and hung back did the Indian captain. Went for a cut shot but did not make contact. At least that is what we felt on the first look. However, Rubab has made a polite inquiry for caught behind. The umpire has denied it. Then she has a conversation with her captain Fatima Sana, possibly discussing the possibilities of opting for DRS. However, Fatima Sana denies it. They do not opt for DRS. Remember, 2 reviews per side per innings are allowed in this particular World Cup. End of the 10th over, 65 for 2 India.
2: भले ही एज वेस्टर्न पर महिला क्रिकेट में जो औसत स्कोर है वो 138 का है, लेकिन भारत यहाँ पर कम से कम 150-160 का लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहेगा, और देखना यह है कि क्या उस इरादे में कामयाब भारतीय टीम हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 65 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और निश्चित रूप से कहना होगा कि 18 पर जब भारत का दूसरा विकेट गिरा था उसके बाद से लेकर अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की है, और देखना यह है कि इस साझेदारी को, इस तरह की बल्लेबाजी के क्रम को वो और कितना देर जारी रख सकते हैं। नाशरा संधु के नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्वीप कर दिया स्मृति ने, और स्मृति के इस स्वीप के बाद जैसे ही गेंद को वहां पर फील्ड किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के नज़दीक, तब तक आसानी के साथ 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। 37 पर पहुंच चुकी हैं स्मृति अब 28 गेंदों का सामना करने के बाद, और कप्तान हरमनप्रीत 22 गेंदों का सामना करने के बाद 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। हमारे स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि हरमन और मंधना ने दोनों ने ही

0: तक T20 मुकाबलों में 86 छक्के लगा चुकी हैं। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को कट किया, लेकिन खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गुलफिरोजा ने। शानदार क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन गुलफिरोजा के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अगर जरा सी भी चूक होती तो शर्तिया 4 रन वहां पर भारत को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल भारत इस 1 रन के साथ संतुष्ट। हरमनप्रीत भी 1 रन के साथ संतुष्ट। 67 पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी। अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद पैड पर टकराई, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद पैड पर टकराई थी, जिसकी वजह से कोई अपील नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ओवर द विकेट और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गेंद को वहां पर खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, 2 रन के लिए बहुत तेजी से पलट लेंगे इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जा सके और थ्रो किया जा सके। इन 2 रनों के साथ भारत अब 69 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर पहले जो औसत रनों की रफ्तार 5.85 के आसपास मंडरा रही थी, वो अब 6.47 रन हो गई है और दोनों के बीच साझेदारी भी 51 रनों की हो चुकी है। 45 गेंदों का सामना करने के बाद पहली अर्धशतक की साझेदारी भारतीय टीम की आज इस मुकाबले में।
1: Right, fifth delivery of the 11th over and Smriti Mandhana unfolds an exquisite inside-out drive, gets 4 for it.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Delivered on a good length, however, Smriti Mandhana shimmied down the pitch, as they say in cricket commentary often. She put her dancing shoes on, shuffled towards the leg side, and that allowed the bat to come through. Inside out she went, the ball into the gap between long off and cover, and skipped away to the boundary. Mandhana into the 40s now. Next delivery, once again she uses her feet, steps out of her crease. However, Nashra Sandhu darts one into her pads in order to ensure that she cannot free her arms. However, Mandhana is able to clip that one away towards deep mid wicket, pick up a single. End of the 11th, 74 for 2.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: बेटी मानना ने 44 रन बना लिए हैं, मात्र 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से, और अगर ये 6 रन वो बना लेती हैं तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ही उनका 34वां अर्धशतक होगा। और वैसे भी दर्पण उनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी उन्हें खासी रास आती है। 2021 के बाद से अब तक कुल मिलाकर इससे पूर्व 6 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं। तो नए ओवर की शुरुआत शमिंग के द्वारा, पहली गेंद और इनसाइड आउट। इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है लेकिन कोई भी फील्डर आसपास नहीं। लंबी दौड़ वहां पर क्षेत्र रक्षक लगाते हुए गेंद को 1 या 2 गज अंदर रोका और रिले थ्रो के द्वारा गेंद पहुंचती हुई वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए स्मृति ने। स्मृति इन 2 रनों की बदौलत अब 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर। भारत का स्कोर बढ़कर हुआ 76 2 विकेट के नुकसान पर। 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, और निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह के क्षेत्र रक्षण को सराह रहे हैं। एक बार फिर से शमीम की अगली गेंद और इनसाइड आउट। इस बार फिर से 30 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से। हालांकि आलिया रियाज वहां पर पहुंचे थी, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हो चुका है स्मृति मांधना का। स्मृति मांधना का ये 5वां अर्धशतक है T20 विश्व कप में, और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 34वां अवसर कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। और पाकिस्तान के खिलाफ यदि बात करें तो ये उनका 2रा अर्धशतक। क्या शानदार बल्लेबाजी की है। शुरुआत में भारत को झटके ज़रूर लगे। शेफाली वर्मा जो बल्लेबाजी के लिए उनके साथ आई थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मात्र 6 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटी थी। जमी वर्मा का बल्ला आज ज़्यादा चला नहीं, 1 रन का उन्होंने योगदान दिया और 18 के कुल स्कोर पर वो पवेलियन की राह पकड़ बैठी। लेकिन के बाद से हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की। अगली गेंद, गेंद को लॉफ्ट कर दिया और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में।

0: ये लगा आभा का चौका।
1: माफ कीजिएगा, चार रनों के लिए वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंची थी एक बाउंस के बाद, और लगातार दो गेंदों पर दो चौके, 84 रन दो विकेट के नुकसान पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहिरा इस समय करती हुई नजर आ रही हैं स्मृति मांधना, अपने हाथ पूरी तरह से खोल बैठी हैं इस अवसर पर वहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज रमीम शमीम के खिलाफ। रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार, इस बार फिर से गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद को खेलने के प्रयास में इस बार पूरी तरह से चूक गई थी, स्टंप के ऊपर से गिल्लियां जरूर बिखेर दी थी वहां पर विकेट कीपर मुनीबा अली ने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, पिछला पैर बिल्कुल क्रीज के अंदर मौजूद था स्मृति का, और किसी तरीके की कोई क्षति की संभावना वहां पर भारत को नहीं थी। स्कोर अभी भी टिका हुआ भारत का 84 दो विकेट के नुकसान पर, दो गेंदों का आना बाकी है। उत्साह में वो गिल्लियां जरूर बिखेरी थी मुनीबा ने एक दबाव डालने की कोशिश की थी स्मृति के ऊपर, लेकिन स्मृति का पिछला पाव अंगद की तरह क्रीज में पूरी तरह से डटा हुआ था।
2: Two things. First of all, these are first signs of turn. This is the first ball that we have seen spinning in this particular match. The second thing is Smriti Mandhana had lunged forward and she had to stretch her back foot backwards as she realized that there was an opportunity of some sort of stumping, and in that she seems to have sprained her groin. She has currently taken her gloves off and she is down on the floor. The team physio has been summoned and Indian fans would hope that this is not anything serious. However, Pakistan might need to pull their socks up because this is some ordinary cricket for them. Right throughout this over, we saw that the offside field was up in the circle. Remember, there's a 25-yard circle in women's cricket and you're only allowed 4 fielders outside of it. Barring long off, everybody outside the circle was on the leg side, and with turn, Smriti Mandhana went inside out, which is one of her strengths, and Pakistan should have realized that this is the area that she will be looking to target, and yet they were bowling the off spinner and had the offside field up. So it was some ordinary cricket from them. Mandhana picked up a couple of boundaries in that direction, and after that, when they pushed one fielder back, Mandhana very cleverly went over mid-on and picked up a boundary in that direction as well. So some smart cricket. It has been a responsible innings, a class act from Smriti Mandhana all throughout the day today. She's currently batting on 54, and the good news is that the physio has done her job. Mandhana is back on her feet. 4,387 runs in T20 internationals against her name. She's the second highest scorer in all of women's T20 internationals. Only Susie Bates ahead of her with 4,720 runs. Next delivery of the over from Rameen Shamim. Delivers this one with a flutter trajectory so that Smriti Mandhana cannot use her feet. Delivers this one outside off as well. Mandhana rocks back and then wards it off towards the point fielder.
1: 145 के लगभग स्ट्राइक रेट स्मृति का, और 54 रन अब तक उनके खाते में। अगले गेंद इस बार ऑफ स्टंप की तरफ पहले से ही शफल करके आ चुकी थी, और चतुराई के साथ शमीम ने हालांकि गेंद को थोड़ा उनसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एन वक्त पर बल्ला अड़ाने में कामयाब रही एक रन के लिए, इससे पहले कि गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जा सकता डीप पॉइंट के क्षेत्र में। इसी के साथ ओवर की भी वहाँ पर समाप्ति हुई 85 दो विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है, और साझेदारी की अगर बात करें तीसरे विकेट के लिए तो वो निश्चित रूप से इस समय काफ़ी बढ़िया, 67 रनों की साझेदारी 53 गेंदों का सामना करने के बाद इन दोनों बैटर्स ने अब तक भारत के लिए अर्जित कर ली है। तो ये साझेदारी यहाँ से अगर और विकराल रूप लेती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दर्पण निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएंगी। शुरुआत में ज़रूर ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बैटर्स को कुछ परेशानी में डालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत का बीच मैदान पर पदार्पण हुआ, एक विश्वास जो टीम में आया, उसके बाद जो एक साझेदारी पनपी वहाँ पर स्मृति के साथ, उसने कहीं ना कहीं अब भारतीय समर्थक दर्शकों को एक राहत की सांस दी है। सादिया इकबाल नए ओवर की शुरुआत करती हुई, पहली गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर स्मृति मंदाना की तरफ से, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और वाइड का इशारा वहां पर आता हुआ, बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग 81 किलोमीटर की रफ्तार की ये गेंद थी, और कहीं ना कहीं इस बार अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी सादिया इस एक

0: अतिरिक्त रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के 86 दो विकेट के नुकसान पर। 3 अतिरिक्त रन उसमें शामिल है। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच के नजदीक पहुंचे और गेंद को लॉफ्ट कर दिया। फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन उनके हाथों से टकराती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: सायरा जमीन वहां पर थी, उनके लिए एक मौका था लेकिन अपने उस हाथों में उस गेंद को कैद नहीं कर पाए। गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद छिटकती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इस तरह से ये एक और जीवनदान और साथ ही साथ भारत और स्मृति के लिए ये 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के 93 दो विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद एक बार फिर से तैयार वहाँ पर। भारतीय इस जोड़ी ने अब तक काफ़ी मुतासिर किया है, खासतौर से स्मृति जिस तरह से अब बड़े शॉट लगा रही हैं और किसी तरह के का जो दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं कर रही वो भारतीय टीम के लिए निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। स्मृति 2 बारी ड्रॉप हो चुकी है 27 के व्यक्तिगत स्कोर पर और फिर 55 के व्यक्तिगत स्कोर पर, 2 जीवनदान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ने अब तक भारत के लिए 62 रन अर्जित किए हैं 40 गेंदों का सामना करने के बाद। सादिया की अगली गेंद और इस बार हरमनप्रीत ने बहुत ही आसानी के साथ पैडल स्विप के अंदाज में गेंद को खेल दिया फाइन लेग की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा को जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: दो फील्डर्स ने वहां पर कोशिश जरूर की थी, दौड़ जरूर लगाई थी लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज थी। सादिया के इस ओवर में पहली गेंद वाइड थी और उसके बाद बल्ले से अब तक 11 रन आ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अब तक इस ओवर में भारतीय बैटर्स बटोर चुके हैं। फातिमा साना थोड़ा सा निराश होती थी, पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली थी लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने में पाकिस्तान के गेंदबाज कामयाब नहीं रहे। पिछली 12 गेंदों में 30 रन बने हैं जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। शानदार प्रदर्शन स्मृति और हरमनप्रीत कौर के द्वारा और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से प्लेस करते हुए 4 रन हासिल कर लिए हरमनप्रीत कौर ने।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: क्या बेहतरीन अंदाज में इस चौके को हासिल किया। 30 गज के दायरे के अंदर 4 फील्डरों की एक लंबी कतार मौजूद थी लेकिन उनके
2: पाकिस्तान हैव यूज्ड 5 बॉलर्स सो फार। सादिया इकबाल, फातिमा सना, तास्मिया रुबाब, रमीन शमीम एंड नाशरा सांधु, व्हिच मींस दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी गोइंग टुवर्ड्स द डेथ ओवर्स। नाउ अराउंड द विकेट टू द लेफ्ट हैंडर कम्स रमीन शमीम, डिलीवर्स दिस वन आउटसाइड ऑफ एंड स्मृति मंदाना वाज ऑलमोस्ट expecting it, hence she shuffled towards the offside, then sat down on a knee and unfurled the sweep shot. However, she could not find the kind of connection that she was looking for. The ball hit the top edge of the bat and then clattered into the grill of her helmet. We might see the mandatory concussion test following. Yes, indeed, the team physio is out in the middle going through the protocols. He would be asking Smriti Mandhana a few questions, making sure that she's not showing any symptoms of concussion. But the replay on my monitor shows an interesting thing, that Rameen Shamim released this one along with the seam, which means she wasn't looking to spin the ball on that occasion, because what we saw previously, that whenever she has tried to spin the ball and delivered it outside the off stump, Smriti Mandhana has gone inside out and hit her over the cover or extra cover region very skillfully, in a very exquisite, very stylish manner. Therefore, she's looking to bring the ball into the left-hander, but almost as if Mandhana expected it, and hence she made that shuffle towards the offside and attempted the sweep. Faulty execution, yes, but the shot selection was spot on.
0: जी हाँ, एक अच्छा द्वंद्व गेंद और बल्लेबाजी के बीच में नज़र आ रहा है इस समय बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर। और भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 105 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन बनाकर स्मृति मंदाना खेल रही हैं। 42 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये रन बनाए हैं और 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। लगभग 152 का स्ट्राइक रेट उनका है। और हरमनप्रीत कौर जो कि टीम की कप्तान हैं, 31 रन 28 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक बनाए हैं, 4 चौके उसमें शामिल हैं और 110 के आसपास का स्ट्राइक रेट उनका भी है। दोनों के बीच साझेदारी की यदि बात करें तो बढ़िया साझेदारी अब तक दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 3rd विकेट के लिए पनप चुकी है।

0: 87 रनों की साझेदारी 62 गेंदों का सामना करते हुए इन दोनों बैटर्स ने भारत की टीम के लिए यहां पर अब तक बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से भारत अब एक बेहतर स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में नज़र आ रहा है। अगर आप भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच T20 मुकाबलों की बात करें तो कुल मिलाकर दोनों के बीच इससे पूर्व 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 13 भारत के पक्ष में और 3 पाकिस्तान के पक्ष में। और T20 विश्व कप की यदि बात करें तो 8 कुल मुकाबलों में इससे पूर्व भारत ने 6 और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कागजों पे आप देखते हैं दर्पण, तो भारत का पलड़ा भारी है। और जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था इस मैच के शुरू होने से पूर्व कि भले ही चिर प्रतिद्वंदी हैं भारत और पाकिस्तान की टीम, लेकिन इस मैच में पलड़ा भारत का ही भारी रहने वाला है। हालांकि शुरुआती झटके भारत को जरूर लगे, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना ने और हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम के लिए पारी को बखूबी संभाला और जिस तरह से उन्होंने अब तक 87 रनों की साझेदारी कर ली है तीसरे विकेट के लिए, भारत अब एक बेहतर स्थिति में इस मुकाबले में नजर आ रहा है। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान पर चलता हुआ थोड़ी ही देर में वो संपन्न होगा और 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 7.78 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक 105 रन बटोरे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की यदि बात करें तो गेंदबाजी में कुल मिलाकर 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल पाकिस्तान की टीम ने अब तक किया है। सादिया इकबाल ने 3 ओवर किए हैं, कोई मेडल नहीं, 34 रन, 1 विकेट उनके नाम, 11.33 का उनका इकोनॉमी रेट। फातिमा साना जो कि टीम की कप्तान है, उन्होंने अब तक 2 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 11 रन, कोई विकेट नहीं, 5.50 का उनका इकोनॉमी रेट। अब तक की सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज रही हैं फातिमा साना टीम की कप्तान। तास्मिया रुबाब ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडल नहीं, 18 रन, 1 विकेट उनके नाम, 6 का उनका इकोनॉमी रेट। और रमीम शमीम ने अब तक 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन दिए हैं, 7.14 का उनका इकोनॉमी रेट। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद की पहली गेंद शमीम के द्वारा और इस बार फिर से इनसाइड आउट खेलते हुए स्मृति मंदाना ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: भारतीय समर्थक दर्शक इस समय बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड पर झूमते हुए जिस अंदाज में स्मृति और हरमनप्रीत इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं, दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, एक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अब तक देखने को मिला है। 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। 14वें ओवर की अभी 2 गेंदों का आना बाकी। अगली गेंद और फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच के नजदीक पहुंचे, गेंद हवा में है और इस बारी लपकने में कोई कोताही नहीं। वहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने गेंद को लपका फातिमा साना ने जो कि टीम की कप्तान है, और इसके साथ ही पारी समाप्त करती स्मृति मंदाना के 68 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगता हुआ 109 के कुल स्कोर पर। लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है स्मृति मंदाना ने।
2: She will get a standing ovation from the Indian spectators as she makes her way out of the ground and she deserves it. Yes, she got 2 lives. She was dropped a couple of times. However, in life, it is about what you make of the opportunities that come to you. And Smriti Mandhana made the most of it today. 68 of 44, 9 fours and 2 sixes, only 16 dot balls in that innings. And she has steadied the ship after the early jolts. Well done, Smriti Mandhana. The interesting thing was that the drinks break was scheduled for the end of the 14th over, but because she was hit on the helmet in this particular over, the umpires rightfully called drinks early. And during that drinks break, we saw an animated conversation in the Pakistani huddle. And who was talking? It wasn't Captain Fatima Sana who was doing the talking. It was rather head coach Wahab Riaz. Now, if you have been following cricket, you know Wahab Riaz as a left-arm seamer who used to play for the Pakistan men's team. You would remember him from the 2011 World Cup semi-final where he took a fifer. More on that later. Meanwhile, Bharti Fulmali has made her way to the middle. Rameen Shamim delivers this one with a flighty trajectory on the pad line on the fuller side of good length. Bharti allows it to come close to her, nudges it into the vacant space in front of square leg and picks up a comfortable single. She's off the mark. 14 done. 110 for 3 India. Now remember folks, at the end of the 10th over, India was 65 for 2, which means in the last 4 over, if my math is correct, they've scored 45. So there has been an upsurge there has been

0: ऋचा घोष। ऋचा घोष ने चौके की मदद से अपना खाता खोला। भारत 114 चार विकेट के नुकसान पर, तीन गेंदों का आना बाकी है। सादिया इकबाल का एक कामयाब ओवर रहा है अब तक। आखिरी गेंद इस बार अराउंड द विकेट आते हुए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए, गेंद के पिच के नजदीक पहुंचते हुए ऋचा घोष ने इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया मैदान की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ और एक रन आसानी के साथ बटोर लेंगे इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके। 115 चार विकेट के नुकसान पर। 22 वर्ष की उम्र ऋचा घोष की सिलीगुड़ी से आती है, जहां पर बहुत ज़्यादा महिलाएं क्रिकेट खेलती हुई संभवतः आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ये उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं, महिलाओं में से हैं, जिन्होंने अपने लिए और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लिए नाम पैदा किया है। महिला क्रिकेट का जहां तक सवाल है, फील्ड पेसिंग में थोड़ा परिवर्तन वहाँ पर, हरमनप्रीत कौर के लिए इस समय ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, और दो खिलाड़ी इस समय बिल्कुल सीमा रेखा पर नज़र आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अगली गेंद और इस बार हल्के से गेंद को पुश किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर फातिमा साना, गेंद को फील्ड कर लेंगी और एक रन तब तक बटोर लेंगी हरमनप्रीत कौर। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर अब हुआ 116 चार विकेट के नुकसान पर। एक और बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, भारतीय फुलमली जो कि एक लंबे अरसे से भारतीय टीम में हैं, थी, बल्कि पदार्पण उनका हुआ था 2019 में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुकाबले उन्होंने भारत के लिए नहीं खेले थे, मात्र 6 मुकाबले से पूर्व 7 वर्षों के बाद टीम में वापसी की थी, अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट और वुमेन्स प्रीमियर लीग खेलने के बाद, लेकिन आज उनका बल्ला ज़्यादा चला नहीं, बहुत जल्दबाजी में वो स्लो खेल बैठी थी और स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन लौटी थी। अंतिम गेंद पर एक रन और भारत को, ओवर की समाप्ति 15 के बाद भारत 117 चार विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Just like a roller coaster, this match continues to go through thrilling bends, twists and turns. Just as my co-commentator Ashish said that India is holding sway, came the drinks break, and after that, Pakistan came back with a couple of quick breakthroughs. As a result, we head into the final 5 overs with India's score reading 117 for 4. How many more will India be able to get? Nashra Sandhu, the left-arm spinner, begins the 16th over, delivers this one with a flighty trajectory. The ball dips on a full length near the off stump. It was delivered from around the wicket and Richa Ghosh is able to drive it towards the extra cover region and pick up a comfortable single. With that, Ghosh has moved to 7. She started off her innings in a sprightly manner, hit a 4 of the first ball that she faced. The next delivery, Harmanpreet Kaur uses her dancing shoes, gets down to the pitch of the ball. It was delivered on the shorter side of good length, outside the off stump, and then very deftly pushes it towards the extra cover fielder. No runs to be had on that occasion. So just the single of the first couple of balls of Nashra Sandhu's over. The next delivery, hurled in with a flatter trajectory at the off stump, and Harmanpreet Kaur opens her shoulders and then stabs this one towards the fielder who is stationed in front of point. No runs to be had of that one as well. 118 for 4, the score remains at a couple of dot balls at this stage of the innings, like gold for Pakistan. Next delivery, Harmanpreet Kaur unfurls what is widely known as her favourite shot, the sweep shot. It goes aerial before the leg side sweeper can get to the ball. It bounces a couple of times and that allows 2 runs, and there is an overthrow. However, Harmanpreet Kaur, was she alive to the possibility of a third run? Remains to be seen. She was running very gingerly and had almost overrun by the looks of it, and therefore it appears that she has not taken the third run, which was definitely on due to the overthrow. Harmanpreet Kaur would retain strike. Next delivery of the over, she backs away from the stumps and then unfurls a robust cut shot. However, the ball goes straight to the fielder station in front of point. Another dot ball, which means 5 deliveries into the 16th over. Just when you thought that India would be accelerating, this over has produced only 3 runs so far. The last ball

0: India would want a boundary. Nashra Sandhu would want to tidy up with a good ball. A good ball would be anything less than a boundary for her. Delivers this one outside off, and Harmanpreet Kaur unfurls the sweep shot. However, a very good diving effort at the mid-wicket boundary keeps her down to two. By the looks of it, it's Aisha Zafar who has dived to her right and saved what looked like a certain boundary. So only two runs of the final ball as well. That over produces only five. A good one for Pakistan. India would want more than five runs and over at this stage. 122 for four.
1: 16 ओवर के बाद 122 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर है. जैसा कि आप जानते हैं कि टॉस भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता था और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहला विकेट भारत ने 6 पर गंवाया, दूसरा 18 पर, तीसरा 109 पर और चौथा विकेट भारत का 110 पर गिरा था. तीसरा और चौथा विकेट ड्रिंक्स इंटरवल के फौरन बाद गिरा और दर्पण, जैसा कि अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि जब भी कोई ब्रेक होता है क्रिकेट में तो उसके बाद बहुत संभावना बढ़ जाती है कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो एकाग्रता होती है बैटर की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और उसका खामियाजा अक्सर बैटर्स को भुगतना पड़ता है. और कोचिज़ अक्सर कहते हैं कि जब भी ड्रिंक्स ब्रेक हो या किसी भी तरीके का व्यवधान हो और उसके बाद खेल शुरू हो तो थोड़ी देर तक आप अपनी एकाग्रता को वापस हासिल करने की कोशिश कीजिए और फिर बड़े शॉट के लिए जाइए. फिलहाल अगले गेंद, और इस बार इस गेंद को इनसाइड आउट खेलना चाहते थे ऋचा घोष. बहुत अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन एक रन ज़रूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके. इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ कर के 124 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर.
0: यू आर राइट आशीष दैट आफ्टर अ ब्रेक द बैटर शुड टेक टाइम, बट द क्वेश्चन इज डू वी हैव टाइम इन T20 क्रिकेट. हरमनप्रीत कौर मीनवाइल ऑन स्ट्राइक. She is looking desperate and she unfurls an aerial flick shot. There's a fielder down there and she's caught it at the brink of the boundary. Fatima Sana punches the air in delight. She has dismissed her counterpart. The Pakistani captain gets out. The Indian captain Harmanpreet Kaur was looking desperate for a big shot. We talked you through it in the previous over as well. She shuffled towards the offside. And hence that delivery was received by her on her pads. She unfurled an aerial flick shot and almost cleared the square leg boundary, almost being the keyword. However, Natalia Parvez, who was stationed in the deep, hopped up and caught it. A good catch, and India have now lost their fifth wicket. 1, 2, 3, 4, 5.
1: शानदार कैच वहां पर लपका नतालिया परवेज ने, और कहना होगा कि कप्तान ने कप्तान का विकेट ले लिया. पाकिस्तान के कप्तान फातिमा साना गेंदबाजी के मोर्चे पर थी और हरमनप्रीत ने एक बार फिर से गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अपने प्रयास में वो कामयाब नहीं रही, उचित दूरी नहीं दे पाई और गेंद को वहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ नतालिया परवेज ने अपने हाथों में कैद किया और हरमनप्रीत की पारी को समाप्त कर दिया. 36 के कुल स्कोर पर ये 36 रन 35 गेंदों का सामना करने के बाद हरमनप्रीत कौर ने बनाए थे. और अब दीप्ति शर्मा, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो इस समय बीच मैदान पर हैं. 16.2 ओवर के बाद भारत 123 पांच विकेट के नुकसान पर. 92 पारियों में 1210 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं, लगभग 105 का स्ट्राइक रेट है. और दीप्ति शर्मा ने पिछले ओडीआई विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी. तो देखना ये है कि इस T20 विश्व कप में क्या कुछ कर पाती हैं. फिलहाल पहली ही गेंद पर आकर के उन्होंने अपना खाता खोल लिया दो रनों के साथ, और इन दो रनों की वजह से अब भारत का स्कोर बढ़कर के 125 पांच विकेट के नुकसान पर.
0: That one was delivered from around the wicket by Fatima Sana onto the pad line. Deepti Sharma using her wrist to flick it away towards the mid-wicket region, and the running between the wickets was pretty impressive. This is something that Deepti has worked upon. Talk more about that after this ball. Fatima Sana once again around the wicket with the keeper up to the stumps, runs in, delivers this one on a drivable length, and Deepti Sharma hits it aerial. Luckily for her, the ball bounces before it goes to the extra cover fielder. It was a slowish ball from Fatima, just 92.2 kilometers per hour, and Deepti Sharma will breathe a sigh of relief. 105 her strike rate, as Ashish just told you. However, that is a thing of the past. She

0: has been working on increasing that strike rate. Because she bats at this number, at number 7, she knows that she will be required to go from ball 1, as it is in this situation too. Not a lot of time remaining. The next delivery over pitch from Fatima Sana. However, Deepthi Sharma, maybe because she hit the last one aerial, she decides to hit this one along the turf in a very measured manner. The ball goes too long off and she picks up a single, taking India's score to 126 for 5. 19 balls remaining. So not a lot of time for Deepthi to have a look in, get herself in, or settle herself, or set her eyes, as we say. Meanwhile, on the other end is Richa Ghosh, who's known to explode from ball 1. One delivery remaining in the 17th over. Ghosh on strike. He runs in, does Fatima Sana, this time from over the wicket. Keeper still up to the stumps. And an Orai delivery, this one from the Pakistani skipper, way down the leg side. Muniba Ali, the wicketkeeper, did really well to dive towards her right and ensure that the ball was stopped. Otherwise, it could have gone on to kiss the boundary cushions in the fine leg region as well. It ends up being only a wide. Claire Polosak, the umpire, extends her arm to signal that. So an extra run and an extra delivery to India. 127 for 5. Final delivery of the 17th over coming up. Here comes Fatima Sana. Delivers a leg cutter. However, the length is very short. A long hop at the pad line, and Richa Ghosh swipes her bat across in order to put this one towards the deep square leg region, where the fielder dives and stops it near the boundary, and hence Ghosh can get only a couple of runs of it. End of the over. 129 for 5.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली. जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: पाकिस्तान के कप्तान फातिमा साना का एक कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ. गेंदबाजी के विशेषण की यदि बात करें तो 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 18 रन और एक सफलता जो कि उन्होंने अपने पिछले ओवर के दौरान हासिल की. हरमनप्रीत कौर के रूप में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं अब तक इस पारी में पाकिस्तान की टीम का. जहां तक सवाल है हरमन की यदि बात करें तो ये 12वां अवसर जबकि वो प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान के द्वारा आउट की गई T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, और पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा अवसर था जबकि प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान ने उन्हें आउट करके पवेलियन चलता किया. नए ओवर की शुरुआत नाशरा के द्वारा, और पहली गेंद को वहाँ पर खूबसूरती के साथ 2 रनों के लिए खेल दिया. इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर के पहुँचता हुआ 131, 5 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की समाप्ति के बाद.
0: दीप्ति शर्मा वॉज a little bit slow to turn around for the second run and hence almost found herself in trouble. However, a big dive saved her. It was Diana Beg who was stationed at deep backward square leg. She ran towards her right and picked that ball up and hurled a flat throw towards wicketkeeper Muniba Ali. Diana Beg is not a part of Pakistan's playing 11 today, but she's on the field as a substitute fielder. Next delivery from Nashra Sandhu, flatter trajectory. Deepthi Sharma wanted to step out of her crease. However, she aborted that plan as soon as she saw the trajectory of the ball. In the end, adjusts into a defensive dab towards the offside. So another dot ball for our scorer Rajit Sinha to mark.
4: लगभग 68 किलोमीटर की रफ्तार उनकी गेंदों की, और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए स्वीप के अंदाज में खेला. गेंद वहां पर शॉर्ट लाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर के पास पहुंची थी, लेकिन बहुत तेजी के साथ दौड़कर अपने बल्ले को क्रीज में टिकाने में कामयाब रही थी इस अवसर पर ऋचा घोष. और वहां पर रनआउट की जो एक संभावना बनी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई इस एक रन की मदद से, जिसमें जोखिम भरपूर था. भारत 132, 5 विकेट के नुकसान पर. अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ऋचा घोष की तारीफ करनी होगी इस अवसर पर, जिस रफ्तार के साथ उन्होंने वो दौड़ लगाई और उस एक रन को मुकम्मल किया. दाएं हाथ की ऋचा घोष तैयार एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए. नाशरा संधु के द्वारा अंपायर और स्टंप के बीच में से निकलती हुई ये गेंद उनके हाथों से ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी. अपने घुटने को जमीन पर टिकाते हुए स्वीप करना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं था, और गेंद को वहाँ पर आसानी के साथ मुनीबा अली ने अपने दस्तानों में कैद कर ली. एक क्षण के लिए शायद लगा था कि गेंद और बल्ले के बीच में कहीं कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. पवेलियन छोर की तरफ से

0: India क्रॉस 150.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Tasmia went wide off the off stump because she did not want to get inside Richa Ghosh's arc. However, Ghosh threw her bat at it. She did not connect in the meat of the blade, ended up slicing this one. However, the ball still went over the head of the shot third fielder and skipped away to the fence. 19 runs in this over. A crucial one from India's perspective. Will this be the difference at the end of the day? One ball remaining. Tasmia Rubab wearing a stern expression on her face. Deepti Sharma ready to run at the non-striker's end. Ghosh on strike. A shot is delivery and it has been swatted away into the gap. Four more.
1: Ye laga abha ka choka.
0: 155 for 5 after 19. It was a long hop from the youngster with plenty of width on offer. Richa Ghosh had her weight on the back foot and she was able to pull it away into the gap. There's a geometry lesson for all of you. Deep mid-wicket, long on, both were stationed on the boundary and the ball went right in the center of that gap. She bisected it. That's what you call a bisector. 155 for 5, 6 balls to go. Fatima Sana to bowl, Deepti Sharma to bat, Richa Ghosh at the non-striker's end and Ashish Charangu to call.
2: Tasmia Rubab ka pichla over kafi mehenga sabit hua. 23 run usme aaye jisme 4 chauke aur 1 chhakka bhi shamil tha. Kya shandar ballebazi ka pradarshan Richa Ghosh ke dwara aur Deepti ke dwara hota hua is samay Edgbaston ke maidan par, jiski badolat Bharat is samay 19 over ki samapti ke baad 155 hai 5 wicket ke nuksan par. ये 23 रन इस ओवर में जो बनाए हैं भारतीय बैटर्स ने, कि निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस मुकाबले के नतीजे का जहां तक सवाल है. फातिमा साना अपने नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं जो कि भारतीय पारी का अंतिम ओवर है और वहां पर दीप्ति शर्मा है. पहली गेंद को बाएं हाथ के दीप्ति शर्मा ने खेल दिया वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में. एक रन वहां पर ज़रूर मिल जाएगा उन्हें. इस एक रन की मदद से उनका स्कोर बढ़ करके हुआ 12 और भारत का स्कोर 156 5 विकेट के नुकसान पर. ऋचा घोष जो कि इस समय आग उगल रही हैं एजबेस्टन के मैदान पर, देखना है कि अगली गेंद पर क्या कुछ कर पाएंगी. 13 गेंदों में अब तक 28 रन बना चुकी है. अगली गेंद और इस बार फिर से खेल दिया उस गेंद को. देखना है कि एक क्षण के लिए लगा था कि वहां पर ऋचा घोष दोबारा से संभवतः उसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास करेंगी. भारत 156 5 विकेट के नुकसान पर. साना की अगली गेंद और इस बार लो फुल टॉस पर आती हुई इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेल दिया. लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: ऋचा घोष का बल्ला इस समय मानो आग उगल रहा हो एजबेस्टन के मैदान पर. 160 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है. ऋचा घोष ने 32 रन बना लिए हैं 14 गेंदों का सामना करते हुए जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है. 228 के लगभग का उनका स्ट्राइकिंग रेट. भारत को इसी तरीके की बल्लेबाजी की दरकार थी अपने लोअर मिडल ऑर्डर से और ऋचा और दीप्ति ने अब तक बिल्कुल भी निराश नहीं किया है. 4 गेंदों का आना बाकी है. फातिमा के इस बार शॉट ऑफ लंग गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया पटकने की कोशिश और इस बार इस गेंद को वहां पर पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम पूरा किया वहां पर मुनीबा अली ने और कोई रन नहीं इस गेंद पर. पहली डॉट गेंद इस ओवर में आती हुई और देखना यह है कि क्या अगली बची हुई गेंदों पर रन बनाने में भारतीय बैटर्स कामयाब होंगे या फिर नहीं. भारत 160 पर पहुंच चुका है जो कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा सकता है. अगली गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और उसने खेल दिया फाइनल लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: भारत इस समय शानदार बल्लेबाजी करता हुआ दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष 4 रनों के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के, देखना यह है कि तीसरे अंपायर क्या इस गेंद को वाइड भी देते हैं या फिर नहीं. 4 वाइड के रन वहां पर भारत को मिलते हुए 165 5 विकेट के नुकसान पर. 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी है. बाउंड्री लाइन

0: पर जो तीन फील्डर हैं वो सभी ऑन साइड पर, अगली गेंद लेग स्टंप से फिर ज्यादा बाहर की तरफ और वाइड का इशारा आएगा। जैकलिन विलियम्स जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, अपना 91वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जिसमें वो अंपायरिंग कर रही हैं, उनकी नजरों से बच नहीं पाई ये गेंद और लगातार दो वाइड गेंद जिस तरह से की है कप्तान फातिमा साना ने, वो कहीं ना कहीं दर्पण दिखाता है कि दबाव इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम के कप्तान पर है।
1: लुक्स लाइक शी इज ट्राइंग टू फॉलो अप घोष, शी इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट शी डजंट गेट द room to swing her arms. Keeper goes back, one of the fielders on the offside drops back, however Richa Ghosh opens her arms and pumps this one over extra cover. This was delivered outside the off stump at 105.5 kilometers per hour on a length. Richa Ghosh however was able to get underneath it, yet she was not able to find the desired timing. The ball slows up in the outfield and the pair of Deepthi and Richa have to settle for a couple. 168 for 5, the score moves to, it has been a long over from Fatima Sana because of those couple of wide deliveries. Two deliveries still coming up, two legitimate balls still to go. Here comes Fatima and she's got Richa Ghosh out bowled, almost as if Ghosh had decided yesterday that she was going to swing her bat and try and deposit this one over long on. She swung it even before the ball arrived. It was on a length. It was there to be hit. And hence an awry smile on the face of Ghosh's, on the face of Richa Ghosh, because she knows it was there to be hit. However, it seems like, according to the replay on our monitors, that it might have been the wobble seam delivery, which sometimes can land on the seam and generate extra bounce, sometimes can land on the side and skid through. It generated a bit of extra bounce and clattered into the top of the off and the middle pole.
0: 34 रनों की शानदार पारी खेल करके रिचा घोष, जो कि टीम के विकेट कीपर भी हैं, वो वापस इस समय पवेलियन लौट चुकी हैं और जिस तरह की पारी की दरकार थी टीम को उनसे, उन्होंने ठीक उसके अनुरूप आज बल्लेबाजी की है। बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर अंतिम गेंद का आना बाकी है। श्रृंखला पाटिल इस समय बीच मैदान पर हैं और इस पारी के अंतिम गेंद का सामना वो करेंगी। देखना है क्या कुछ कर पाती हैं। 9 पारियों में 26 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं और 74 का उनका स्ट्राइक रेट। फातिमा साना तैयार अगली गेंद करने के लिए, लेग स्टंप से बाहर की तरफ, क्या वाइड होगी? जी हाँ, एक बार फिर से गेंद वहां पर वाइड। लगातार इस ओवर में यदि बात करें तो वाइड का सिलसिला देखने को मिला है। तीसरी वाइड गेंद जो कि कप्तान फातिमा साना करती हुई, 7 रन इस ओवर में भारत को मिल चुके हैं उपहार स्वरूप। और जैकलिन विलियम्स ने एक बार फिर से कोई कोताही नहीं दिखाई। जैसे ही उन्होंने देखा कि लेक्सम से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद है, दोनों भुजाओं को ज़मीन के समान अंतर फैलाकर उन्होंने वाइड का इशारा किया। फातिमा का ये लंबा ओवर क्या इस गेंद के साथ समाप्त होगा या फिर एक और वाइड या नो बॉल? अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को रिवर्स स्वीप करना चाहती थी LBW की वहां पर अपील। स्टंप के बिल्कुल सामने जाकर गेंद उनके शरीर पर टकराई थी और देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहां पर क्या फैसला।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: The score was reading 169.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी

0: 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्री

0: मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
1: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सीनियर स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस

0: दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन GST बनाया है सरकार ने।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: स्पेशली द कंट्रीज लाइक आर्स।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket,

0: It is a sitter by the standards of international cricket. She might have been staring into the sun, but she's wearing the sunglasses. She can shake her head all she wants now. However, the truth is that catch is expected to be taken on a good length, and Muniba Ali stepped out like she had decided yesterday, tried to go inside out, ended up slicing the ball and running towards her left from backward point. Arundhati got to the ball, got two hands to it, and yet couldn't hold on. Next delivery, a good looking drive towards deep cover, produces a single and marks the end of the fourth over. 37 without loss. Sriyanka's two overs have seen two drop catches.
1: बिल्कुल, श्रियंका पाटिल के पिछले दो ओवर में दो अवसर ऐसे आए जबकि मुनीबा अली को आउट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले ओवर में ऋचा घोष ने उनका कैच छोड़ा और इस ओवर के दौरान अरुंधति रेड्डी ने उनका कैच छोड़ा, और निश्चित रूप से इस तरीके की जो क्षेत्ररक्षण में चूक है वो भारतीय टीम पर दबाव काफ़ी बढ़ा सकती है, भारतीय टीम के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। भारतीय टीम ने आज बल्लेबाजी अच्छी की, खासतौर से स्मृति मंदाना की बात करें या फिर हरमनप्रीत की बात करें या ऋचा घोष की बात करें, लेकिन अब भी गेंदबाजी में वो धार देखने को नहीं मिली है जिसके लिए भारतीय टीम से अपेक्षा की जा रही है।
0: इंटरेस्टिंग थिंग देयर आशीष, इवन स्मृति मंदाना वाज ड्रॉप ट्वाइस, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर ड्रॉप ट्वाइस, द सेम हैज हैपन इन पाकिस्तान इनिंग्स एज वेल, एंड इंडिया डेस्परेटली नीड टू पुल देयर सॉक्स अप, दे डेस्परेटली नीड अ विकेट, बिकॉज इफ दिस पार्टनरशिप गोज ऑन फॉर अ व्हाइल प्रेशर विल बी ऑन इंडिया एंड इन ट्रबल। Call whom? Call Deepti Sharma. Deepti Sharma has been summoned and delivers a very good delivery to start off with. Slow through the air, just 70 kilometers per hour, delivered from over the wicket, pitches round about the off stump and then spins sharply to beat Muniba Ali's tentative poke. A good start from Deepti Sharma. However, can she produce a wicket in this over and swing the momentum towards India? Muniba Ali shuffles towards the offside. Deepti Sharma goes even wider. However, Muniba Ali is able to stretch her arms out and slash this one straight to the fielder station at cover point. Two dot balls to start off with. Deepti Sharma's beginning has been solid, but can she continue bowling in tidy areas?
1: दीप्ति शर्मा से काफ़ी उम्मीदें हैं भारत को, दाएं हाथ से ओवर द विकेट स्टंप के नज़दीक से मुनीबा अली के लिए, और इस बार इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, कामयाब जरूर रहे लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया स्क्वायर लेग की दिशा में 25 गज के दायरे के अंदर बिना किसी रन के। स्कोर पाकिस्तान की टीम का 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 37 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान के, जबकि पांचवा ओवर इस समय प्रगति पर है। अगली गेंद फ्लाइटेड, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को वहां पर फील्ड किया गया, क्षेत्र रक्षक गेंद से काफ़ी दूर था लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे वापस दीप्ति शर्मा के पास। इस एक रन की मदद से 38 पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर, मुनीबा पहुंची 24 पर। 20 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 24 रन बनाए हैं और गुल फिरोजा इस समय 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। रनों की रफ्तार को थामने में जरूर कामयाबी हासिल हुई है दीप्ति शर्मा को इस ओवर के दौरान, पहली चार गेंदों में ये पहला रन था। अगली गेंद तो और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंद हवा में और वहां पर कोई गलती नहीं की, पहला झटका लगता हुआ गुल फिरोजा के रूप में पाकिस्तान को ये झटका लगा है और दीप्ति शर्मा ने अपने पहले ही ओवर के दौरान ये सफलता भारत को दिलवा दी है। जिस उम्मीद के साथ हरमनप्रीत कौर ने उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया था, निराश नहीं किया और जैसे ही इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की वहां पर कोई गलती नहीं हुई और बहुत आसानी के साथ कैच कर लिए गए इस अवसर पर पाकिस्तान के गुल फिरोजा।
0: Catch taken at backward point by Bharti Phulmali. Now, interesting thing was that Deepti Sharma pushed backward square leg to the boundary. She also pushed mid wicket to the boundary. Remember, you are only allowed two fielders outside the 25-yard circle in the power play. So both those fielders were on the leg side and Deepti went around the wicket for this delivery, which means she wanted to give away a single by delivering it on the pad line. Gul Firoza was very well aware of it and therefore she tried to manufacture a shot by flipping in her stance and going over backward point. However, she wasn't able to find the desired elevation and Bharti Phulmali did the rest. And now in walks Aisha Zafar, who last month against Zimbabwe

0: which is not considered the strongest team in the world, but against that side, she scored a century. Remember what I told you? In women's T20 internationals, only 3 centuries have been scored by Pakistani batters. 2 by Muniba Ali, 1 by Aisha Zafar, both of them out in the middle. Last delivery of the 5th over is coming up. Deepti Sharma currently in play. She is delivering the last delivery of her first over, delivers this one on the pad line, and there comes the sweep shot, well placed by Aisha Zafar. She beats the diving shot fine leg fielder to her left. However, the deep backward square leg fielder will be able to run around and cover up for the mistake done inside the inner ring. Hence, only a single end of the 5th. 39 for 1.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: तो दीप्ति शर्मा का कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ भारत के लिए पहली सफलता उनके नाम के आगे दर्ज हो चुकी है और अब तक 162 विकेटें उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हासिल की है, जो कि इस विश्व कप में खेलने वाले तमाम गेंदबाजों में से सबसे ज़्यादा है। क्या शानदार प्रदर्शन रहा है दीप्ति शर्मा का, न केवल गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने समय समय पर जौहर दिखाए हैं। और श्रियंका पाटिल के स्थान पर, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है लगातार, उनके स्थान पर अब अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी के मोर्चे पर नज़र आ रही हैं 39 एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद।
0: A slight delay because there's some problem with the zinc bail which is now being replaced. Looks like the replacement has been done and now we are set to go. Arundhati Reddy to bowl what will be her second over.
5: पहले ओवर में 8 रन उन्होंने दिए थे। देखना है कि अपने इस दूसरे स्पेल के पहले ओवर में क्या कुछ कर पाती हैं। पहली गेंद ओवर द विकेट, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा। एक रन अब उपहार के रूप में मिलता हुआ पाकिस्तान की टीम को और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 40 एक विकेट के नुकसान पर 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एज वेस्टर्न पर इस समय भारतीय गेंदबाजी का मुकाबला कर रही है। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से पुश किया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद 25 गज के दायरे के अंदर फील्ड कर ली गई और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को वहां पर समाप्त कर दिया गया।
0: एंड देयर कम्स अ फ्लैट थ्रो टू द कीपर who fails to gather it once again. However, the overthrow doesn't cost India anything, but Richa Ghosh needs to tighten up.
5: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं न केवल एक कैच उन्होंने छोड़ा है, बल्कि जो स्टंप के पीछे गैदरिंग है उनकी वो आज उतनी साफ नहीं है। अगली गेंद इसे बेच और उठा करके खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। इस बार जफर ने गेंद सीमा रेखा से बाहर 5 रनों के लिए, 4 रनों के लिए माफ कीजिएगा।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंची हैं आयशा जफर इस चौके की मदद से। और आयशा जफर, जिसके बारे में अभी दर्पण बता रहे थे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो घरेलू T20 मुकाबले हुए थे उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और 102 रन बनाए थे पहले ही मैच में और उसमें आउट भी नहीं हुई थी। 47 गेंदों में वो 102 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। अगली गेंद बैकफुट पे जाकर खूबसूरती के साथ कट कर दिया और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई एक बार फिर से 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: पहले ओवर में 8 रन दिए थे अरुंधति रेड्डी ने और इस ओवर में लगातार यहां पर रन लुटाती हुई नजर आ रही हैं। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद लगातार 2 चौके और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइन और लेंथ पर ज़रूर सोचना होगा। बहुत ज़्यादा रूम ना दें वो बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए, कुछ ऐसा उनको करना होगा। एक बार फिर से तैयार, इस बार इस गेंद को बैकफुट पे जाकर हल्के से पुश किया, दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश ज़रूर की थी अरुंधति ने वहाँ पर, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं रही और इससे पहले कि गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जा सके बहुत तेज़ी के साथ दौड़कर 1 रन और जुटा लिया पाकिस्तान के आयशा जफर ने। आयशा जफर इस 1 रन की मदद से दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद मुनीबा अली 24 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना

0: 3.2।
1: तिरपन एक विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से अराउंड द विकेट, वहां पर दीप्ति शर्मा और गेंद को स्वीप करना चाहते थे लेकिन वहां पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, कोई कोताही नहीं, बहुत ही सफाई के साथ उस कैच को मुकम्मल कर लिया और यहां पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता हुआ। आयशा जफर, जिनसे काफी उम्मीदें पाकिस्तान की टीम को निश्चित रूप से रही होगी, जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, शतक लगाया था, लेकिन यहां पर दीप्ति शर्मा ने उन्हें वापस पवेलियन चलता कर दिया है मात्र 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर। इस गेंद को जैसे ही उन्होंने अपना मौका ताड़ने की कोशिश की, स्वीप किया था लेकिन फाइन लेग जो कि 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर मौजूद था, कोई गलती वहां पर नहीं हुई और इस तरह से उस कैच को मुकम्मल कर लिया गया। तो एक और झटका पाकिस्तान की टीम के लिए। स्मृति मांधना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ डाइव लगाते हुए उस गेंद को अपने हाथों में कैद किया और ये कामयाबी भारत की झोली में डाल दी।
0: विकेट वंस अगेन फॉर दीप्ति शर्मा, शी डिलीवर्स एवरी टाइम इंडिया नीड्स हर टू। व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अटैक, व्हाट डिड वी से, इन ट्रबल कॉल दीप्ति। And she has delivered with not just one, but two wickets now. Two wickets in her 1.3 overs, 2 for 3. And in walks youngster Saira Jabeen now. Saira Jabeen and Muniba Ali in the middle. Pakistan still needing 117 in 80 balls here at Edgbaston, which has been an iconic ground and has witnessed many iconic moments in cricket. Is witnessing another iconic match because both the teams are tussling it out there. Deepti Sharma still around the wicket, delivers this one on a good length, slow through the air, just 70 kilometers per hour, and that allows the batter to get onto the front foot and then nudge it towards backward square leg and pick up a comfortable single. In case you've just joined us, Pakistan have just lost their second wicket. Smriti Mandhana with an excellent catch at short fine leg, for which she had to fling herself forward and grab it inches from the ground, produce that wicket of the bowling of Deepti Sharma. Meanwhile, the next delivery, Deepti beats the bat. Good length, pitches outside off and then spins further away. Muniba Ali flayed her hands away from the body. The ball whizzed past the outside edge and Richa Ghosh once again fumbled in collection. Final ball of the over on a drivable length. In a measured manner, Muniba knocks it towards deep extra cover where Jemima Rodrigues mops up a comfortable single added. Pakistan moved to 55 for 2 at the end of the 7th.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: अपना पांचवा T20 विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा ने दो सफलताएं अब तक अपने पहले दो ओवर के स्पेल में हासिल कर ली हैं और भारत की अब तक एकमात्र सफल गेंदबाज हैं। और उनका गेंदबाजी का विश्लेषण यदि आप देखें दर्पण, तो दो ओवर में कोई मेडल नहीं, 5 रन उन्होंने दिए और दो सफलताएं, ना केवल सफल बल्कि साथ ही साथ किफ़ायती भी, और जिसकी दरकार है भारत को गेंदबाजी में परिवर्तन। श्री चरनी इस समय अरुंधति रेड्डी के स्थान पर आती हुई पहली गेंद और इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं। गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स के द्वारा लेकिन तब तक 1 रन के लिए छोर बदल लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से मुनीबा का स्कोर हुआ 28, 25 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब वहाँ पर श्री चरनी की यदि बात करें तो 21 मैचों में अब तक 28 विकेट उन्होंने हासिल की हैं। शानदार प्रदर्शन रहा है चरनी का पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और अराउंड द विकेट आते हुए इस अवसर पर 1 रन के लिए खेल दिया था उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। इस 1 रन की मदद से सायरा का स्कोर पहुँचा 2 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हुआ 57 दो विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है। गेंद की रफ्तार यदि आप देखें तो चाहे श्री चरनी की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की, बहुत ज़्यादा गति नहीं दे रही हैं अपनी गेंदों को।

0: गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन का और इजाफा होता हुआ मुनीबा अली के खाते में। इस एक रन की मदद से मुनीबा पहुंची हैं अब 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच गया है 58 दो विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं दीप्ति शर्मा के खाते में। श्री चरणी की अगली गेंद और लीडिंग गेंद और इसके साथ ही एक और सफलता वहां पर भारत को। श्री चरणी जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है एजबेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर। और साइरा जबीन ने जबकि इस गेंद को खेलने की वहां पर कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगती हुई लीडिंग एज लेती हुई हवा में उछली और 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर उस गेंद को लपकने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती कप्तान हरमनप्रीत ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका है। एक बार फिर से भारतीय टीम इस समय बहुत तेजी के साथ इस मुकाबले में वापसी करती हुई, हालांकि एक समय जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, लेकिन 38 के कुल स्कोर पर भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिलाई और अगले ही ओवर में एक और कामयाबी उन्होंने दिलाई दी थी आयशा जफर का विकेट लेकर। और मज़े की बात है गुल फिरोजा और आयशा जफर दोनों ही 12-12 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे।
1: Right, so third wicket down now. Natalia Parvez makes her way to the middle, and Shri Charni producing the goods for India. Left-arm spinner, the preferred left-arm spinner, should I say? Why did I say that? We'll tell you after this ball. Around the wicket, she comes in to deliver what will be the fifth ball of the eighth over. This one, an attempted slog sweep from Natalia Parvez, which lands in the vacant region at mid-on before Kranti Gaur can run in from long on, pick the ball up and hurl it back towards the 22-yard strip. A comfortable single will be taken. So not a very convincing shot, but it allows Natalia Parvez to get off the mark. Remember, Radha Yadav is a part of the squad and she is an all-rounder. She can bat a bit too. However, Team India prefers Shri Charani over her, even though she's a bit of a liability in the field or has not really been that good in the field of late. She has also, she doesn't have that kind of batting credentials either. Yet, she brings so much with the ball in her hand that India prefer her. The next delivery, which was the final one of the 8th over, was delivered on a drivable length. Muniba Ali inside edged it onto her pads. End of the 8th, 59 for 3 are Pakistan. And they are in pursuit of 171. Still need 113 more in the remaining 72 balls. So Shri Charani and Deepti Sharma, the successful bowlers for India. Deepti Sharma will continue and she will deliver her third over. Big appeal for LBW and shakes her head. Does umpire Claire Polosak. This one was delivered from around the wicket. Pretty much in line with the stumps. At least it looked so to my untrained eye. Attempted a sweep there. Did the batter and did not connect. And interestingly, India have challenged the decision. They have opted for the use of DRS. And Claire Polosak makes the signal over to TV umpire.
0: तो भारत के लिए यहाँ पर एक और अवसर है, हालांकि अपील बहुत विश्वास के साथ की थी वहाँ पर दीप्ति शर्मा ने। अंपायर क्लेयर पोलोसेक ने उसे नकार जरूर दिया था, लेकिन एक लंबी मंत्रणा वहाँ पर दीप्ति शर्मा, विकेट कीपर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में हुई थी और उसके बाद हरमनप्रीत ने फैसला लिया कि वो DRS के लिए जाएंगे। तो देखना यह है कि TV अंपायर का वहाँ पर क्या निर्णय आता है। निश्चित रूप से भारतीय टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दीप्ति शर्मा अपनी इस अपील पर नज़र आ रही थी और मुनीबा अली 29 रन बनाकर खेल रही हैं, नतालिया परवेज एक रन बनाकर खेल रही हैं। इस समय प्रश्न चिन्ह उन्हें लेकर के है कि नतालिया परवेज क्या मैदान पर रहेंगी, बल्लेबाजी को जारी रखेंगी या फिर पवेलियन की तरफ वापसी करनी होगी।
1: The thing to be seen here is whether the ball pitched in line with the stumps or not, because remember Deepti Sharma went around the wicket to the right

0: handed batter. She often gets a lot of drift. Did the ball drift enough to pitch in line with the stumps is the question. Before that, of course, TV umpire Kim Cotton will go through the procedures. First of all, she will check if there is any bat involved or not. And Ultra Edge tells us, the according to the graph that is up on our monitors, it tells us that there is no bat or no glove involved. Ball tracker coming up next. Yes, it has drifted in enough to pitch in line with the stumps. However, it is spinning, or rather drifting a little bit too much, suggests ball tracker. It would have only clipped the off stump. Hence, it's two reds, pitching in line, impact in line, but wickets hitting is umpire's call. Two reds and an amber. India will keep the review. However, Natalia Parvez survives.
1: So, Natalia Parvez अभी भी बीच मैदान पर एक के व्यक्तिगत स्कोर के साथ टप्पा खाने के बाद गेंद ड्रिफ्ट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी और अंपायर्स कॉल थी वो वहां पर जिसका लाभ नतालिया को मिला था वहां पर. इसी बीच रनआउट की एक और अपील अगली गेंद पर आगे की तरफ निकली थी बहुत तेजी के साथ. दीप्ति ने वहां पर थ्रो किया था ऋचा घोष की तरफ और स्टंप के ऊपर से उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी थी. देखना है कि क्या इस अवसर पर ये टीवी अंपायर का जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाता है या नहीं. लेकिन जो हमें स्क्रीन पर देखने से लग रहा है दर्पण, उससे तो ये लगता है कि बल्ला टिकाने में कामयाब हुई थी नतालिया परवेज अपनी क्रीज के अंदर. तो 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम का स्कोर है फिलहाल एजबेस्टन पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के इन दोनों ही टीमों के पहले मुकाबले के बीच में. नतालिया एक बार फिर से स्ट्राइक पर स्टांस लेने के साथ तैयार और अराउंड द विकेट आते हुए दीप्ति शर्मा और इस बार मिडल ओवर स्टंप की इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन जुटाने में कामयाब रही नतालिया परवेज और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 63 विकेट के नुकसान पर. मुनीबा अली ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीबा ने इस बार ये गेंद और जुटा लेंगे. इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है और दो सफलताएं अब तक भारत के खाते में डाल चुकी हैं. अराउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को सेव करने के अंदाज में खेला लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर. डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन का इजाफा और हो जाएगा इस पांचवीं गेंद पर और 62 स्कोर हुआ पाकिस्तान की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद का आना बाकी है. पिछली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने में मुनीबा अली और नतालिया परवेज कामयाब हुए हैं दीप्ति शर्मा के सामने. अंतिम गेंद पर मुनीबा क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगी. ओवर द विकेट मुनीबा के लिए और फ्रंट फुट पर आकर हल्के से गेंद को पुश किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में. 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन की तमाम संभावनाएं समाप्त कर दी गई. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 62-3 विकेट के नुकसान पर.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली. जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Pakistan need 109 more runs in the remaining 11 overs. Sri Charani begins a fresh over, delivers this one on a very full length. Natalia Parvez wanted to step out of her crease. However, she had to abort the plan in between because the ball landed or dipped in the block hole. She was able to squeeze it back to the bowler. Deepti Sharma, before this, delivered her third over. Now that is interesting. That is interesting. Why? We'll tell you after this ball. Sri Charani runs in to deliver the next delivery. Delivers this one outside the off stump. And excellent bit of fielding from Harmanpreet Kaur. Might have produced another wicket for India. However, we will wait. We will wait for the umpire to make a signal. And Claire Polosak looks like is not very interested. Harmanpreet Kaur is celebrating. Radha Yadav, Smriti Mandhana and Deepti Sharma have run to her, hugged her. She has started celebrating but the umpire has not given it out. That is interesting. This one was pushed towards the extra cover region. Harmanpreet dived towards her right, picked it

0: and hurled a flat throw towards Richa Ghosh, who collected the ball, whipped the bails off. However, with an excellent dive, Muniba Ali had made her ground, and Claire Polosak has not even attempted to use technology. She says, "I've got eagle eyes. I've seen it with my own eyes. It is not out." Excellent bit of umpiring. The replay suggests that her decision was correct. Next delivery, flighted outside the off stump, chipped towards Kranti Gaur at long off, who fumbles and therefore allows two runs to the Pakistani batters. But excellent bit of umpiring that, Ashish.
1: बिल्कुल, तारीफ करनी होगी वहाँ पर क्लेयर पोलोसेक की, जिन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ वो निर्णय लिया. और टेक्नोलॉजी का भी जब हमने उपयोग देखा स्क्रीन पर होते हुए तो लगा कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर. इसी बीच अगली गेंद और गेंद को वहाँ पर खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा से बाहर, चार रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: स्वीप करने के अंदाज में खेला था मुनीबा अली ने इस अवसर पर, और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से होती हुई चार रनों के लिए बाहर चली गई. श्री चरणी, जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, आंध्र प्रदेश से आती हैं और पहला अपना विश्व कप खेल रही हैं. 2025 के बाद दर्पण अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए अगर किसी गेंदबाज ने बटोरे हैं तो वो श्री चरणी हैं.
0: That is why Radha Yadav has been kept out of the side. Next delivery, lofts this one over, extra cover does Muniba Ali. The leaping fielder at the edge of the 25-yard circle would not be able to get to it, and hence a couple of runs will be taken. That takes Pakistan's score to 71 for 3 in 9.5 overs. This one was delivered from over the wicket, outside off, by Shree Charani. One ball remaining in the 10th over, and Pakistan thus far seem like they are on track, given that India was 65 for 2 at the end of their 10th over. Next delivery induces the edge, does Shree Charani, but there is no slip in place, and the run out opportunity, if at all there was any, has been squandered too, because Richa Ghosh has not been able to collect this one cleanly. It was delivered outside off on a length. Muniba Ali went for the drive, got a thickish outside edge. The ball went towards Shefali Verma, who was stationed at short third, who picked it up, hurled a flat throw towards the Indian wicketkeeper, who could not quite collect it cleanly. The single was taken. Pakistan end the 10th over with their score reading 72 for 3. Just going back on the point of Deepti Sharma, her three overs have been used, and Ashish, she's the designated death bowler in this Indian team. But Harmanpreet realized that the need of the hour is give her the extra over, which means there could be trouble when it comes to death.
1: जी हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद हरमनप्रीत की मंशा ये हो कि उस स्टेज तक उस मैच को जाने ही ना दिया जाए और पहले ही पाकिस्तान की पारी को समेट लिया जाए. और मुझे लगता है कि उन्होंने सही कप्तानी की है वहाँ पर, लगातार दीप्ति शर्मा को तीन ओवर करा के. श्री चरणी का ये ओवर महंगा ज़रूर साबित हुआ, 10 रन उनके इस ओवर में आए. दो ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, एक सफलता उनको भी मिली है, कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने दिए हैं. और श्री चरणी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला विश्व कप खेल रही हैं, और इनसे भविष्य में भी भारत को बहुत आशाएँ हैं. फिलहाल पाकिस्तान 72, 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, और 10 ओवर के बाद भारत की पारी की जो स्थिति थी वो ये कि भारत ने 65 रन बनाए थे और दो खिलाड़ी भारत के आउट हुए थे. तो 7 रन पाकिस्तान ज़्यादा बना चुका है, लेकिन एक विकेट भी उसने ज़्यादा गंवाया.
0: Shreyanka Patil begins a fresh over, and something interesting has happened. This was delivered from around the wicket on a length, and Muniba pushed it towards the left of her. Shreyanka Patil wanted to gather the ball, however the non-striker came in the way and Shreyanka was not able to stop the ball, and hence the single was taken. Shreyanka looks at the umpire and says that this is not fair, but the umpire shakes her head. Next delivery, delivered on a good length at the stumps, goes down on a need as Natalia Parvez, and Slok sweeps it towards the fielder on the leg side boundary. Jemima Rodrigues collects it and hurls a throw at the non-striker's end, which Shreyanka Patil has not been able to collect cleanly, and she has copped one in the groin region, and she is currently on the floor.
1: या थोड़ी बहुत पीड़ा में ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्द खेल एक बार फिर से शुरू होगा. और पाकिस्तान की टीम की शुरुआत, जैसा कि हमने कहा कि अच्छी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल के बाद भारतीय गेंदबाजों को सफलताएं मिली. दो विकेट अब तक दीप्ति शर्मा चटका चुकी हैं, एक विकेट श्री चरणी ने अपने स्पेल में हासिल अब तक किया है.

0: प्रियंका पाटिल का ये दूसरा स्पेल है, हालांकि पहले स्पेल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। मुनीबा अली की बात करें तो उन्होंने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, 40 रन अब तक उन्होंने बना डाले हैं 34 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 5 चौके शामिल हैं और लगभग 117 का स्ट्राइक रेट है। और बाकी के बल्लेबाज आया राम गया राम की तर्ज पर नजर आए पाकिस्तान की टीम की। जहां तक सवाल है गुल फिरोजा की बात करें, आयशा जफर की बात करें या साहिरा जबीन की बात करें, तो ये खिलाड़ी बहुत कम योगदान देकर वापस पवेलियन लौटते हुए नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी साझेदारी की दरकार है, जबकि भारत नहीं चाहेगा कि एक बड़ी साझेदारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को एज वेस्टर्न पर मिले।
1: Meanwhile, the team physio is out in the middle attending Shreyanka Patil. She's been given some water and some moments to breathe hard and collect her breath back. Renuka Thakur, one of the reserve players, is also out there in the middle. It is interesting that India have kept Renuka Thakur out, because remember, back in 2022, when the Commonwealth Games were held at this very ground, every match was played at this very ground during that competition, Renuka Thakur was super impressive. She picked up 11 wickets in that tournament, which was the highest not just for India but in the entire tournament. Rather, they preferred Kranti Gaur and Arundhati Reddy as the seamers over Renuka Thakur. Anyhow, Shreyanka is good to go. Around the wicket, she runs in to deliver what will be the third delivery of the 11th over. Delivers this one on a good length, in line with the middle and leg pole. Muniba Ali gets a healthy stride out and then uses her wrist to deftly turn it away towards mid-wicket. Picks up a comfortable single that takes Pakistan's score to 75 for 3. They need 96 more in the remaining 57 balls.
0: श्रियंका पाटिल ने 14 महीनों की इंजरी के बाद वापसी की थी और WPL में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को खेल दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया। पाकिस्तान 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75-3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 2 गेंदों का आना बाकी है। श्रियंका पाटिल एक बार फिर से और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का किनारा जरूर दे बैठी, लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के पास। सीधा थ्रो वहां पर स्टंप्स पर आया स्ट्राइकिंग एंड की तरफ। क्या भारत के लिए ये रनआउट के रूप में एक और सफलता आ सकती है? जैकलिन विलियम्स ने टीवी अंपायर को रेफर किया है, काफी नजदीकी मामला हो सकता है तर पर।
1: गेस हू द फील्डर इज, दीप्ति शर्मा कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर इंडिया। The replay on our monitor is up and it suggests that the batter is short. Natalia Parvez got an outside edge. She wanted the single. However, Muniba Ali denied it and hence she had to turn back and go towards safety. Looks like she hasn't been able to ground her bat, or is it Muniba Ali who has been run out? We'll find out in just a second. However, it is Deepti Sharma's golden arm which has produced another wicket. Beg your pardon, it is Muniba Ali who failed to make her ground at the striker's end, and therefore another wicket produced for India. Pakistan are 75 for 4.
0: क्या सटीक निशाना था वहाँ पर दर्पण दीप्ति शर्मा को? और मुझे याद आता है कि किस तरह से क्रिकेट की और राह पकड़ी थी दीप्ति शर्मा ने। एक मैदान पर जबकि खेल हो रहा था, उनके भाई वहाँ पर खेल रहे थे और गेंद उनके पास पहुँची थी और बड़े कैजुअल अंदाज में उन्होंने गेंद को फेंका और वो सीधा जाकर स्टंप पर टकराई, और वहाँ पर जो UP के चीफ सेलेक्टर थे उस समय, उन्होंने वहाँ से उनको अपनी छत्र छाया में ले लिया और आज भी उन्होंने वैसे ही कमोवेश कारनामा करके दिखाया है।
1: She was born with it, isn't it? She was born with it. The talent was gifted to her by Mother Nature. Anyhow, responsibility now on the shoulders of Pakistan skipper Fatima Sana, who now makes her way to the middle. Pakistan are 75 for 4 and have just lost the wicket of Muniba Ali, who has been their top scorer so far. 41 of 35 is what Muniba managed. She hit 5 boundaries in that innings of hers, and Shreyanka Patil's over has produced a wicket finally. Remember, 2 drop catches of her bowling. This doesn't go into her account, this run out, but it produces a wicket for India, and another drop catch. Looks like this was a cotton bowled opportunity which Shreyanka Patil had.

0: killed herself. On her length, in line with the stumps, Fatima Sana pushed it with hard hands. The ball went uppishly back to the bowler, who failed to hold on to it in her follow through. 75 for 4.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: तो पिछला ओवर भारत के लिए सफलता लेकर के आया जब दीप्ति शर्मा ने रन आउट करवा दिया था मुनीबा अली को एक बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर, और जिसकी वजह से मुनीबा अली 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन लौटने पर मजबूर हुई थी। इधर श्री चरनी के स्थान पर अब शफाली वर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर है, जो कि दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अक्सर भारतीय आक्रमण की शुरुआत उनके द्वारा की जाती रही, लेकिन आज उनसे आक्रमण की शुरुआत तो नहीं कराई गई, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर शेफाली वर्मा नज़र आ रही हैं बल्लेबाजी में। मात्र 6 रन बनाए एक छक्के की मदद से। देखना यह है कि गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए क्या कुछ कर पाती हैं। अगली गेंद, और इस बार फातिमा सना ने इस गेंद को खेला लेकिन सीधा कवर क्षेत्र में, 25 गज के दायरे के अंदर। कोई रन नहीं बनेगा। पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए फातिमा एक बार फिर से तैयार। इस बार लेक्सम से काफ़ी ज़्यादा बाहर, निश्चित रूप से वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा। इस एक अतिरिक्त रन की बदौलत 77 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 4 अतिरिक्त रन उपहार के स्वरूप अब तक पाकिस्तान की टीम को दिए जा चुके हैं भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। शफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को लपक लिया आसानी से जेमिमा रॉड्रिक। स्मृति थी वहां पर, दरअसल उन्होंने गेंद को लपका और इस तरह से पारी समाप्त कर दी है। वहां पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फातिमा सना की, खाता भी अपना नहीं खोल पाई 0 के स्कोर पर। 6 गेंदों का सामना करने के बाद वापस पवेलियन लौट रही है। धीमी गति की गेंद थी और इस गेंद को उठा करके खेलना चाहती थी, लेकिन वहां पर स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने पंजों पर उचकते हुए उस गेंद को, कैच को मुकम्मल किया और पारी को समाप्त कर दिया पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए।
0: गेट शेफाली टू बोल अ लिटिल बिट मोर। Do you or do you not remember the World Cup final from the last year when she produced a couple of wickets? Here again she has produced the goods for India. Shefali Verma with the wicket of Fatima Sana has pushed Pakistan on the back foot, 77 for 5. Meanwhile, I need to make a correction. The last ball of the previous over, I said Shreyanka Patil dropped a catch. However, the replays that appeared a little bit late on our monitor suggested that the ball had fallen just short of Shreyanka Patil, so she collected it on a half volley, or rather fumbled in the collection, but it was on a half volley. Alia Riaz meanwhile has now come out to the middle. She is the most experienced batter in this team. In fact, a lot of eyebrows were raised when Fatima Sana was appointed as the skipper, because Alia Riaz is far more experienced. Why was she not given the captaincy? But that is another matter. Currently she needs to bat Pakistan out of trouble. A delivery on a full length near the off stump, which has been squeezed along the carpet towards cover. Alia Riaz faces a dot ball to begin her innings. Next delivery, again on a full length, once again gets forward as Alia Riaz, and this time knocks it towards long off. A comfortable single will be taken that gets Alia Riaz off the mark, and Pakistan's score moves to 78 for 5 with a ball remaining in Shefali Verma's first over. Runs in the Shefali, once again a full length delivery outside the off stump. Natalia crouches and then heaves it towards deep mid wicket, where Radha Yadav does the mop up job. A comfortable single has been taken, but singles won't hurt India anymore because they are in ascendancy with the score reading 79 for 5 at the end of the 12th over. Pakistan need 92 more runs in just 8 overs.

0: papers. Safe to say that India now are in the driver's seat.
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और स्मृति मानधना की भी तारीफ करनी होगी, 68 रनों की बेहतरीन पारी और उसके बाद दो शानदार कैच उन्होंने जो लपके हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी वो एक प्रबल दावेदार इस मुकाबले में नजर आ रही हैं दर्पण।
0: Absolutely, catches win matches, the odds, the old saying. Shri Charni with a change of ends produces another wicket. Harmanpreet Kaur takes the catch and extra cover. Natalia Parvez has to say goodbye. India get another wicket. Pakistan, a collapsing Pakistan, are crumbling. India on top. They were 75 for 3 and now they have been reduced to 79 for 6. This was a floated up delivery at the off stump on a very full length. Natalia stayed beside the line, tried to go inside out over extra cover but could not find the desired elevation, stretched her arms upward, did the Indian captain, and the ball stuck to the middle of her palms like a bug in a cobweb. Out for 7 of 13 balls without scoring any boundaries is Natalia Parvez. Pakistan down in the dumps, 79 for 6.
1: To 26 run banate banate Pakistan ne apne 5 विकेट गवा दिए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है इस मुकाबले में भारत के खिलाफ। और भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर से स्पिन गेंदबाजी की यदि हम तारीफ बात करें तो दर्पण ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन, तेज़ गेंदबाजी को लेकर चिंताएं पहले भी थीं और आज भी इस मुकाबले में हमने देखा कि चाहे क्रांति गौड़ हों या फिर अरुंधति रेड्डी, उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। नए ओवर की शुरुआत, बल्कि श्री चरणी वहां पर अपने ओवर को जारी रखती हुई पहली गेंद पर सफलता उनको मिल चुकी है और इस समय शमीम वहां पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं, रमीन शमीम। देखना है कि यहां पर किस तरह से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ा पाती हैं। पाकिस्तान की टीम इस समय खासी मुश्किलों में नज़र आ रही है। श्री चरनी की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन एज बेस्टन पर,
0: ओवर द विकेट डिलीवर्स दिस वन नियर द ऑफ स्टंप एंड इट वाज पुश्ड टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन फॉर अ सिंगल बाय शमीम हु गेट्स ऑफ द मार्क। द नेक्स्ट डिलीवरी कम्स अराउंड द विकेट, डज Shri Charani delivers this one to Alia Riaz. Once again near the off stump, Alia Riaz with a deft push towards mid-off where the captain fumbles. Harmanpreet Kaur with a little bit of a misfield allows 2 runs and hence Alia Riaz takes herself to 3. Pakistan 82 for 6. Next delivery of Shri Charani is over on a good length around the off stump, 78 kilometers per hour or thereabouts. Riaz has to adjust into a defensive push.
1: 44 gendon mein 89 रनों की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को और 4 विकेट मात्र सुरक्षित है पाकिस्तान की टीम के। अगली गेंद श्री चरनी की और इस बार अराउंड द विकेट आते हुए अंपायर उस स्टंप से बीच से निकलकर ये गेंद फ्लाइटेड थी, बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास किया लेकिन सीधा 25 गज के दायरे के अंदर फील्डर के हाथों में गेंद पॉइंट क्षेत्र में पहुँचती हुई बिना किसी रन के। पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है आलिया को और देखना यह है कि आलिया रियाज और रमीन शमीम मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान की पारी को और कितना दूर ले जा सकती है। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच के नज़दीक पहुँचकर गेंद को ड्राइव किया, वाइड एश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद फील्ड हो रही है लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने एक रन के लिए छोर बदल लिया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के अब हो गया है पाकिस्तान का 83 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: 42 गेंदों में 88 रन, पाकिस्तान को ज़रूरत है मुकाबला जीतने के लिए लेकिन शफाली वर्मा की पहली गेंद को वहां पर स्वीप करने की कोशिश कामयाबी मिली लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद और इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके एक रन के लिए आसानी के साथ छोर बदल लिया बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर पाकिस्तान की टीम का बढ़कर के अब 84 6 विकेट के नुकसान पर।

0: शेफाली वर्मा को पिछले ओवर के दौरान सफलता मिली थी, क्या इस ओवर में भी वो भारतीय टीम के खाते में एक और सफलता दे पाएंगी? ऐसा कर पाती हैं तो भारत के लिए जीत की राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल मंत्रणा चलती हुई ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम के साथ शेफाली वर्मा की। 13.1 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर 84 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। मुनीबा अली को अगर छोड़ दें दर्पण तो बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम के। शेफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार अराउंड द विकेट क्रीज के कोने से बाएं हाथ के बल्लेबाज रमीन शमीम के लिए, और इस बार इस गेंद को स्वीप किया है लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है वहां पर, और इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे 1 रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस 1 रन की मदद से 86 6 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 13.2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंद और रनों के बीच का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में इस समय पूरी तरह से झुका हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद आलिया के लिए और आलिया ने इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया लेकिन बहुत ताकत से लगा हुआ स्ट्रोक नहीं था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्वतः ही जाकर के रुक गई थी। हालांकि एक दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका जरूर वहां पर दीप्ति शर्मा ने, थ्रो किया लेकिन तब तक 2 रनों का फासला तय कर चुके थे आलिया रियाज और रमीम शमीम। इन 2 रनों की मदद से आलिया रियाज पहुंची 7 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शेफाली वर्मा इस बार ओवर द विकेट और इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ना चाहती थी। ऋचा घोष के पास अवसर था, अगर सीधा थ्रो उनका स्टंप्स की तरफ लगा होता तो गेंद स्टंप्स पर लगने के साथ ही बैटर आलिया रियाज को वापस पवेलियन जाना पड़ सकता था। हालांकि रिव्यू वहां पर जरूर लिया है।
1: Two things happened there. First of all, there was an appeal for LBW because Shefali thinks that her ball spun enough to beat the inside edge of the bat and hit Alia Riaz on the pads. After hitting the pad, the ball trickled away towards the onside and Riaz wandered out of her crease in order to search for a non-existent run. Richa Ghosh ran towards her left, picked the ball up and then attempted to hit a direct hit, score a direct hit at the keeper's end, but she was not able to. So Riaz survived the run out scare. However, for the LBW appeal, which was denied by umpire Jacqueline Williams, India have posed a challenge. Harmanpreet Kaur has shown the T signal, which calls for DRS. The first replay is on our monitors and it's a complicated replay because the bat and pad are close together. There is a definite spike on the graph of ultra edge. However, the bat and pad are super duper close. So we do not know whether that spike is due to the ball hitting the bat or it is due to the bat hitting the pad. And therefore, the wisdom of umpire Aloysius Sheridan, who is in the chair of TV Empire right now, matters a lot. It is her judgment which will decide whether or not we go to the ball tracking replay. Only if she decides that the ball is hitting pad first, we will go to the ball tracking replay and thereby the question of whether it was in line, whether it would have gone on to hit the stumps will arise. But the first question is whether it has hit the pad first or the bat first. Looks like umpire Sheridan has decided that it has hit bat first, which means India will lose a review and Alia Riaz will survive.
0: जी, काफ़ी नज़दीकी मामला था क्योंकि बैट और पैड जैसा कि दर्पण आपने बताया बिल्कुल साथ थे, और वहाँ पर टीवी अंपायर के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई बहुत आसान निर्णय नहीं था, लेकिन फैसला अंततः बल्लेबाज के पक्ष में रहा और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87 6 विकेट के नुकसान पर।
1: And that is why, Ashish, we need umpires. People say, do away with them, leave everything to technology. No, we need umpires. This is the reason.
0: जी हाँ, हर मशीन के पीछे एक मानव ज़रूर होता है और यहाँ भी हमने वैसा ही देखा। फिलहाल अगली गेंद पर 1 रन का इजाफा 88 6 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है पाकिस्तान की टीम के सामने 171 रनों का, यानी बची हुई 37 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता है, और ये लक्ष्य जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य है। और

0: अगर यही स्थिति अगले 2-3 ओवर तक बनी रही तो मैं कहूंगा दर्पण फिर ये मैच जो है पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाएगा। और जो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर है, बल्लेबाज हैं, उनसे ये उम्मीद की जानी कि वो यहाँ पर 36 गेंदों में 82 रन बनाएंगे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा।
1: Absolutely, it's a mountain to climb. A single to end the 14th over, which was played down to long on by Ramin Shamim, and that calls for a drinks break. The final one of this particular match, Pakistan are 89 for 6 and need 82 more runs in the remaining 6 overs. India have plenty of flexibility going into the final 6 because of the two excellent overs delivered by Shefali Verma, who, as we have been saying, should be getting more and more opportunities to bowl as she has proven it again and again. Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Kranti Gaur, Deepti Sharma, Shri Charani and Shefali Verma, the 6 bowlers that have been used by Captain Harmanpreet Kaur. Of course, this match is being played at the Edgbaston, which is an iconic cricket ground in Birmingham in England. It hosted its first ever first class game back in 1885, first test match in 1902 and first women's test match in 1963. Of course, has hosted some iconic matches like the Commonwealth Games of 2022, the 1999 World Cup semi-final. Remember Lance Klusener, Alan Donald, that run out? That match happened here. Brian Lara, who scored 501 not out during a first class game, that happened here. So it's been an iconic ground, and looks like one more chapter will be added today when India beat Pakistan. Are we jumping the gun? No, we aren't, because this looks like an improbable climb, doesn't it, Ashish?
0: Yeah, और इतिहास भी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि शायद इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति इस संस्करण में भी करे। T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचा है T20 विश्व कप के मुकाबलों में, और 2024 में भी उन्होंने जो 4 मैच खेले अपने ग्रुप में उसमें सिर्फ 1 जीता था। और उधर आप भारत की यदि बात करें तो भारत 4 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 2020 में भारत रनर्स अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसे पराजित किया था, और रैंकिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो भारत मीलों आगे है पाकिस्तान से। 3 नंबर की पोजीशन पर भारत है T20 रैंकिंग में, जबकि 8वें स्थान पर पाकिस्तान है। तो कागज़ों पर कोई मेल नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि खेल के मैदान पर जो प्रदर्शन होता है नतीजे उसके हिसाब से आते हैं, लेकिन आज खेल के मैदान पर भी भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अब तक नज़र आया है।
1: However, there is something to play for, and that is net run rate. Remember, this group that India is in is called the group of death. India, Australia, South Africa, 3 contenders for the cup. Only 2 will make it to the semi-final, and therefore it could come down to net run rate at the business end, and therefore India would want to win by a big margin. Shri Charani will begin bowling. What is the 15th over of the innings? Delivers a tossed up ball which Shamim gets a long stride forward to. She takes it on the full in front of the off stump and then bunts it towards the square leg region. That will allow for a comfortable single, which takes Pakistan's score to 90 for 6 after 14.5. Shri Charani switches her angle, goes around the wicket for the right-handed Alia Riaz, and Alia Riaz steps out to this good length ball and chips it towards the right of Shri Charani. Shri Charani wanted to run towards her right and attempt a catch. However, the non-striker was in the way.
0: जी हाँ, non-striker की वजह से Shri Charani उस catch को लेने की कोशिश भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान फिलहाल 91, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार ये गेंद ओवर द विकेट बाएं हाथ के बैटर को, और उस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं और इस बार रन लेने का कोई अवसर भी नहीं बन पाया। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स, तीसरी गेंद डॉट बॉल, 33 रनों में 80 रनों की आवश्यकता। समीकरण लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई और वहाँ पर आसानी से कवर क्षेत्र में लपक ली गई, और एक बार फिर से पाकिस्तान मुश्किलों में पड़ता हुआ। 7वें विकेट का पतन हो चुका है रमीन शमीम के रूप में। 4 रन उन्होंने बनाए 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और श्री चरनी को एक और सफलता यहां पर मिलती हुई। तो भारत अब काफी मजबूत

0: में आ चुका है ये गेंद, हवा में टप्पा खाने के बाद जैसे ही थोड़ी सी टर्न हुई अंदर की तरफ उसको खेलने का प्रयास किया था, ऑफ साइड में कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, आगे की तरफ गेंद को डाइव करते हुए लपकने में कामयाबी हासिल की क्षेत्र रक्षक ने और इस तरह से पारी का अंत कर दिया रमीन शमीम का। तो 7 विकेट का नुकसान, श्रियंका पाटिल वहां पर क्षेत्र रक्षक थी, उन्होंने ये शानदार कैच लपका और 91 रनों पर पाकिस्तान की टीम अब 7 अपने बल्लेबाज गवा चुकी है। मात्र 3 विकेटों की और आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं दर्पण कि यहां से अब जीत की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: एब्सोल्युटली, दे कॉल इट द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज।

0: दी है। मात्र 3 विकेटों की और आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं दर्पण कि यहां से अब जीत की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: Absolutely, they call it the game of glorious uncertainties. But Pakistan need more than a miracle if they are to win this. Nashra Sandhu is the new batter in. She's not in the side for her batting credentials. Sri Charani goes around the wicket for the right-handed batter, delivers this one on a drivable length on the stumps, and the batter will be able to work it towards mid-wicket and pick up a comfortable single that takes Pakistan's score to 92 for 7 with one ball remaining in the 15th over. Tried to step out and whack it, did Ramin Shamim on that occasion, ended up slicing it. An excellent diving catch from Shreyanka Patil at backward point. Next delivery of the over, which is the final one of the 15th over, induces an outside edge and the ball goes trickling away to Deepti Sharma at backward point. And because it is Deepti, Alia Riaz doesn't even think of a single. They know what Deepti can do. They know what she did earlier. End of the 15th, 92 for 7.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: श्री चरनी के 4 ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है और 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन दिए, 3 सफलताएं हासिल की और इकोनॉमी उनकी 5.25 रन की। शानदार प्रदर्शन श्री चरनी के द्वारा एक बार फिर से। काफ़ी युवा गेंदबाज हैं और काफ़ी प्रभावित किया है 2025 के बाद से अपनी गेंदबाजी से। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है शफाली वर्मा के द्वारा, और शफाली वर्मा की पहली गेंद पर 1 रन और दूसरी गेंद को खेल दिया था वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुँचे विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए वहाँ पर। एक अच्छा प्रयास वहाँ पर क्षेत्र रक्षण का, गेंद को रोकने के प्रयास में राधा के द्वारा, और वहाँ पर रिले थ्रो के द्वारा गेंद अंततः पहुँची थी विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में, लेकिन तब तक दौड़कर 3 रन बना लिए थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। आलिया इन 3 रनों के साथ 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और अब नाशरा संधु तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। शफाली वर्मा की ये गेंद ओवर द विकेट, और इस बार इस गेंद को स्लॉग शिफ्ट करने के अंदाज में खेला। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, गेंद वहां पर फील्ड कर ली जाएगी, लेकिन 1 रन का इजाफा इसी बीच ज़रूर हो जाएगा पाकिस्तान के योग में। नाशरा संधु इस 1 रन की मदद से 3 पर, और आलिया रियाज अब तैयार हैं वहां पर 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद को पूरी तरह से चूके पैड पर लगी, लेकिन नेक्सम के बाहर जाकर गेंद पैड पर टकराई थी, जिसकी वजह से कोई अपील नहीं की वहां पर शफाली वर्मा ने। गेंद की रफ्तार इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी शफाली वर्मा की, लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, कॉट बिहाइंड की अपील जरूर की, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा, जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं अपने 91वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इस समय अंपायरिंग कर रही हैं।
1: शिफाली वर्मा आस्क्ड ऋचा घोष, आवाज आई क्या? And Richa Ghosh shaked her head. Then why were you appealing? Anyhow, next delivery outside the off stump, lofted over backward point, and the ball goes skipping away to the fence. 100 up for Pakistan with this boundary.
5: ये लगा आभा का चौका।
0: अंतिम गेंद का आना बाकी है, 10 अतिरिक्त रन हैं इन 102 रनों में। गेंद शफाली वर्मा की बैकफुट पे जाकर कट किया, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन गेंद को वहां पर रोक लिया जाएगा क्रांति गोड के द्वारा। गेंद को फील्ड किया ऋचा घोष की तरफ थ्रो, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रनों के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 104 7 विकेट के नुकसान पर। आलिया रियाज 18 रन बनाकर खेल रही हैं, और नाशरा संधु ने अब तक 3 रन अपने बल्ले से योगदान के रूप में पाकिस्तान को दिए हैं।
1: Right, 4 overs remaining, and as we said, India will want to restrict Pakistan to as low a total as possible, because remember,

0: 66th in T20 internationals. Alone at the top of the mountain, the player of the tournament from the 2025 ODI World Cup has begun the T20 World Cup campaign in style. India win by 64 runs.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: तो भारत की शानदार सफलता इस T20 विश्व कप के 10वें संस्करण के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से पराजित करने में कामयाब रही भारतीय टीम। और T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये नवा मुकाबला था और इन 9 मुकाबलों में अब तक 7 भारत के पक्ष में रहे और 2 पाकिस्तान के पक्ष में। भारत की शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भले ही अच्छी ना हुई हो, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से स्मृति मांधना ने, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 68 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी। 34 रनों की एक बेहतरीन पारी की वजह से भारत 20 निर्धारित ओवर में 170 रन बनाने में कामयाब रहा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान को 171 रनों की दरकार थी मुकाबले को जीतने के लिए। शुरुआत उनकी अच्छी हुई, मुनीबा अली ने अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से, लेकिन खासतौर से मध्य क्रम में उनके विकेट एक के बाद एक बहुत तेज़ी के साथ गिरते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। और भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने आज 5 विकेट हासिल किए। अब वो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। एक शानदार सफलता। और श्री चरनी ने भी आज भरपूर योगदान दिया। शफाली वर्मा का भी प्रदर्शन गेंदबाजी से बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर जो स्पिन गेंदबाजी रही भारत की वो काफ़ी अच्छी रही, जिसकी बदौलत भारत ने 17 ओवर में ही पारी को समेट दिया पाकिस्तान की 106 रनों पर और इस मुकाबले को 64 रनों से जीत लिया। तो मैं आशीष चरणगु, अपने साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। अब से थोड़ी देर में हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
6: Ibaya, Akashwani, Mukokchung. Asnuki Delinung Yukpa ICC Women's T20 World Cup 2026 Asaya Commentary Angashuku Taunungasushi Tanabuba Transmission Shibanger Asungnab Mazung Transmission Trukaku Minute Tinamertinung Labuktsu Aunung Dachung J Hind.